0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वीडियो संदेश के माध्यम से बृहत्तर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बिम्स्टेक देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंक के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत अमेरिका व्यापार वार्ता सही दिशा में जारी, समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ऊर्जा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने के लिए अगले सप्ताह भारत आएंगे। बिहार में वैशाली के राघोपुर में नाव दुर्घटना में 13 लोगों की मौत और भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम हैदराबाद में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो संदेश के माध्यम से बृहत्तर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस सम्मेलन का विषय है भारत के वैश्विक सांस्कृतिक संबंध।
1: 3 दिवसीय सम्मेलन में 50 देशों के प्रतिनिधि, राजदूत और विद्वान एकत्रित होंगे। इस सम्मेलन में भारत के ऐतिहासिक और समकालीन सांस्कृतिक संबंधों तथा विश्व के विभिन्न देशों के साथ उसके जुड़ाव पर विचार विमर्श किया जाएगा। चीन, जापान, मंगोलिया, नेपाल और ईरान सहित विभिन्न देशों के प्रतिभागी साझा सांस्कृतिक विरासत और सभ्यतागत आदान प्रदान से जुड़े विषयों पर होने वाली चर्चाओं में योगदान देंगे। यह सम्मेलन ग्रेटर इंडिया सोसाइटी की स्थापना के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। इस संस्था की स्थापना आज ही के दिन 1926 में कोलकाता में भारतीय विद्वानों की एक पीढ़ी द्वारा की गई थी, जिसमें गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में जुड़े थे। सम्मेलन के दौरान एशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत शीर्षक से एक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आंध्र प्रदेश की 2 दिन की यात्रा पर आज विजयवाड़ा जाएंगी। राष्ट्रपति आज शाम विजयवाड़ा के श्री कनक दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और कल विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेले का उद्घाटन करेंगे। मेले में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के स्वयं सहायता समूहों की 1500 से अधिक महिलाएं ग्रामीण उत्पाद, पारंपरिक हस्तशिल्प और क्षेत्रीय खाद्य पदार्थों का प्रदर्शन करेंगी। नई दिल्ली में बिम्स्टेक देशों के गृह मंत्रियों की पहली बैठक कल दिल्ली घोषणा के साथ संपन्न हो गई। दिल्ली घोषणा में बिम्स्टेक देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित हर तरह के आतंक की कड़ी निंदा की है।
2: बिम्स्टेक देशों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद को व्यापक तथा निरंतर प्रयासों से रोकने, उनका मुकाबला करने और उन्हें समाप्त

0: करने का संकल्प दोहराया। सदस्य देशों ने एक दूसरे से जुड़े, सुरक्षित, संकटों का सामना करने में सक्षम, विकसित और समृद्ध बिम्स्टेक क्षेत्र के निर्माण के लिए क्षेत्रीय सहयोग मजबूत करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। देशों ने सदस्य राष्ट्रों में हुए आतंकवादी हमलों के दोषियों को संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत दंड दिलाने का आह्वान किया। दिल्ली घोषणा में मानव तस्करी, मादक पदार्थों, नशीले पदार्थ बनाने में इस्तेमाल होने वाले रसायनों और धन शोधन की रोकथाम से जुड़ी कार्य योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया गया। घोषणा में आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता से संबंधित बिम्स्टेक संधि को प्रभावी ढंग से लागू करने पर भी बल दिया गया। इस संधि पर मार्च 2022 में कोलंबो में आयोजित 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे। समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमरीका के बीच व्यापार वार्ता सही दिशा में जारी है और समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के व्यापार मंत्री इस समझौते पर काम कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अमेरिका ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। उन्होंने कहा है कि हर देश को अमेरिका के साथ अपने संबंधों का नए सिरे से आकलन कर आवश्यक बदलाव करने होंगे। चीन के संबंध में उन्होंने कहा है कि सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता भंग होने पर द्विपक्षीय संबंधों पर इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। श्री जयशंकर ने बताया कि सीमा क्षेत्रों में स्थिति सामान्य होने के साथ दोनों देशों के संबंध भी सामान्य स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भारत और चीन सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बहाल करने में सफल रहे हैं। रूस से संबंधित एक अन्य सवाल के जवाब में डॉक्टर जयशंकर ने स्पष्ट किया कि भारत ने कभी ऐसा कोई संकेत नहीं पाया है कि रूस से खरीदे जा रहे किसी भी सामान में चीनी तकनीक शामिल है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन युद्ध के कारण रूस का झुकाव एशिया की ओर अधिक बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि रूस के पास कई विकल्प होना भारत और पूरी दुनिया के हित में है। इस संदर्भ में भारत रूस के लिए एक स्वाभाविक विकल्प है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो अगले सप्ताह भारत आएंगे। इससे दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होगी। वे भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी की मजबूती, क्षेत्रीय और वैश्विक परिस्थितियों पर विचार विमर्श तथा ऊर्जा सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा के लिए वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: दांत खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
4: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: सुनती हो, कमाल ही हो गया।
2: क्या हो गया ऐसा?
1: सिलेंडर आने में देरी हो रही थी ना, देखो आज आ गया।
2: ये कमाल कैसे हो गया?
1: मैंने www.pgportal.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट को बोल कर दर्ज किया और देखो तुरंत एक्शन हुआ।
2: ये तो बहुत बढ़िया पोर्टल है।
1: 22 भारतीय भाषाओं में आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, अपनी समस्या का समाधान और प्राथमिकता का अनुभव पाएं, जैसे हमने पाया। सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। बिहार के वैशाली जिले के राघोपुर दियारा इलाके में कल रात एक नाव दुर्घटना में 13 लोगों की मृत्यु हो गई। मृतकों में अधिकांश नाबालिग हैं। वैशाली की जिलाधिकारी वर्षा सिंह ने बताया कि नाव पर लगभग 20 लोग सवार थे, जो एक भोज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। 6 लोगों को बचा लिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी प्रत्येक मृतक के परिजन को 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। उनकी ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित है। सेवा और सुशासन की इस सोच से प्रेरित सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। आज इस विशेष श्रृंखला में हम आपको जानकारी

0: दे रहे हैं कि किस प्रकार धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र जैसी परियोजनाओं के माध्यम से इस दृष्टिकोण को धरातल पर उतारा जा रहा है।
1: भारत के अधिकांश औद्योगिक शहर पहले विकसित हुए, बाद में वहाँ बुनियादी सुविधाएं पहुँची। धोलेरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी पहल है, जो खंबात की खाड़ी के पास एक ऐसी ग्रीनफील्ड सिटी है जहाँ कोई भी प्लॉट बिकने से पहले सड़क, पानी, बिजली और फाइबर जैसी सुविधाएं पहुँचाई गई है। धोलेरा के अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभरने को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
2: हमें धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन पर भी बहुत गर्व है। ये शहर मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा केंद्र बन रहा है। धोलेरा में भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटी तैयार हो रही है। ये रीजन फ्यूचर टेक्नोलॉजी के लिए अर्ली मूवर एडवांटेज दे रहा है, यानी आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र में जमीन पूरी तरह तैयार है, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, पॉलिसी प्रेडिक्टेबल है और विजन लॉन्ग टर्म है।
1: स्मार्ट सिटी के विस्तार और इसके तीव्र गति से विकसित हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रकाश डालते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा,
3: धोलेरा स्मार्ट सिटी का विकास अंदाजन 920 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में हो रहा है। यहाँ सेमीकंडक्टर, एरोस्पेस और डिफेंस जैसे इमर्जिंग सेक्टर की इंडस्ट्रीज आ रही है और उसके लिए सरकार ने हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शुरू कर दिया है। अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे के निर्माण से कनेक्टिविटी आसान हो गई है और ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का काम अंतिम दौर में है। आने वाले दिनों में धोलेरा देश की पहली स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी के रूप में स्थापित होगी।
1: ऐतिहासिक समुद्री विरासत से लेकर भारत की अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग भविष्य तक धोलेरा दूरदर्शी योजना और विकसित भारत के संकल्प का एक अनूठा प्रतीक है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: कोलकाता में दुर्गा पूजा को लेकर उत्साह दिखने लगा है। आज चतुर्थी पर शहर में हर्षोल्लास का माहौल है। रंग बिरंगे पंडाल, जगमगाती रोशनी और ढाक की गूंज से पूरा शहर उत्सवमय हो गया है। एक रिपोर्ट।
4: पूजा पंडालों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और तैयारियां जोरों पर हैं। कई लोग अभी से पंडालों में घूमने और त्योहार की खरीदारी के लिए निकल रहे हैं। बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस और स्थानीय प्रशासन यातायात व्यवस्था बनाए रखने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रहे हैं। बंगाल के लोगों के लिए दुर्गा पूजा महज एक त्योहार नहीं, बल्कि खुशी और परंपरा और आपसी मेलजोल का अवसर है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज हैदराबाद में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। रविवार को इंदौर में खेले गए तीसरे मैच में वेस्टइंडीज को 14 रन से हराने के बाद भारत 5 मैच की श्रृंखला में 2-1 से आगे है। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में तन्वी शर्मा और किदाम्बी श्रीकांत ने दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। तन्वी ने पहले दौर में जापान की नात्सुकी निदायरा को हराया। अगला मुकाबला उनका जर्मनी की यमोन ली से होगा। वहीं किदाम्बी श्रीकांत ने भी फ्रांस के अर्ना मर्कले को हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई। वे दूसरे दौर में फ्रांस के ही एलेक्स लेनियर से खेलेंगे। पुरुष डबल्स में आज सात्विक साईराय रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी तथा महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद अपनी अपनी चुनौती रखेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: PCP NDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
6: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
7: धन्यवाद मुकेश। ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, भारत वैश्विक चुनौतियों के बीच मजबूती से आगे बढ़ रहा है। जनसत्ता की सुर्खी है, भारत किसी की कीमत पर नहीं दुनिया के साथ विकास करता है। लोकसत्य का शीर्षक है, दुनिया को जोड़ने की ताकत रखता है भारत। 12 वर्षों की आर्थिक नीतियों में सशक्तिकरण पर रहा जोर। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, दुनिया में तनाव के बीच IMF ने बढ़ाया भारत की ग्रोथ का अनुमान, आगे भी विकास दर तेज रहेगी। पत्र के अनुसार भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी में बना हुआ है। अमर उजाला के अनुसार त्योहारी सीजन, अर्थ जगत में राहत, बाजार झूमा, UPI पर शुल्क दीपावली तक टला। शेयर बाजार की रफ्तार से 1100 अंक से अधिक चढ़ा सेंसेक्स। दैनिक जागरण ने गृहमंत्री अमित शाह का बयान देते हुए लिखा है, 8,000 की भीड़ जुटा देश की आवाज नहीं बन सकते राहुल।

0: 2029 में भी हार के लिए तैयार रहे कांग्रेस। एसआईआर के विरोध के नाम पर घुसपैठियों को बचाने की विपक्ष की रणनीति समझ चुकी है जनता। गृहमंत्री अमित शाह का बिम्स्टेक देशों से आह्वान पर पंजाब केसरी की सुर्खी है, आतंकियों को पनाह ना मिले। पत्र ने दिया है चीन को भारत की दो टूक, लद्दाख हमारा अटूट अंग। विदेश मंत्रालय ने कहा पेचिंग का दावा करने से हकीकत नहीं बदलने वाली। राजस्थान पत्रिका ने पेपर लीक मुद्दे पर नंदन नीलेकणी का सुझाव देते हुए लिखा है एआई से तैयार करें पेपर, प्रश्न बैंक से बनाएं प्रश्न पत्र, परीक्षा से ठीक पहले तय किए जाएं सवाल, 1.5 लाख परीक्षा केंद्रों का नेटवर्क बढ़ेगा। दैनिक भास्कर ने दावा शीर्षक से दिया है प्रदर्शन कहां और कैसे हो, कोर्ट ने केंद्र से मांगा पक्ष, प्रदर्शनों से व्यापारियों को 2000 करोड़ रुपए का नुकसान। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है नीट जेई की तैयारी के लिए जल्द आएगा अभ्यास एआई ऐप, घर में प्रैक्टिस पेपर डाउनलोड कर एग्जाम दे सकेंगे।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वीडियो संदेश के माध्यम से बृहत्तर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बिम्स्टेक देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंक के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा भारत अमेरिका व्यापार वार्ता सही दिशा में जारी, समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ऊर्जा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने के लिए अगले सप्ताह भारत आएंगे। बिहार में वैशाली के राघोपुर में नाव दुर्घटना में 13 लोगों की मौत। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम हैदराबाद में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी है, विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 27वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा समुद्र, बंदरगाह और नई आर्थिक शक्ति। इसमें भाग ले रहे हैं रक्षा विश्लेषक कोमोडोर केडी जोशी और रणनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर राहुल मिश्रा। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
1: जनसेवा से देश सेवा श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। जैसा हम जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 वर्ष पूरे किए हैं सार्वजनिक सेवा के, 13 वर्ष गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में और 12 वर्ष से वो देश के प्रधानमंत्री हैं। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं, बंदरगाह, समुद्र और नई आर्थिक शक्ति। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत का जो समुद्र तट है वो बहुत लंबा है, 11,099 किलोमीटर के करीब का, और जो इनलैंड वाटरवेज हैं उनकी भी लंबाई 14,500 किलोमीटर के करीब है, और 95% भारत का जो ट्रेड बाय वॉल्यूम और लगभग 70% बाय वैल्यू मैरिटाइम रूट से आवाजाही उसकी होती है। तो इसलिए बहुत ही एक ये इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और इस पर हम एक्सपर्ट ओपिनियन आज लेंगे, बारीकी से चर्चा करेंगे। तो हमारे विशेषज्ञ हैं हमारे साथ जुड़े हुए इस कार्यक्रम में, कॉमोडोर केडी जोशी जो है डिफेंस एनालिस्ट और प्रोफेसर राहुल मिश्रा जो है स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत।
2: धन्यवाद।
3: धन्यवाद
1: कॉमोडोर जोशी। बंदरगाहों का

0: विकास गुजरात में हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबसे लंबी कोस्ट लाइन है भारत में, वो गुजरात में ही है, 2340 किलोमीटर। सो जिस तरह से वहां की सरकार ने ये रियलाइज किया कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है और प्राइवेट पार्टिसिपेशन के साथ उन्होंने वहां पर कैपेसिटी बिल्डिंग की है, इसको आप कैसे देखते हैं और क्या ये मॉडल पूरे भारत में, पूरी जो कोस्ट लाइन है वहां पर भी सफल रहा है?
1: आप बिल्कुल सही बोल रही हैं कि जो प्राइवेट पार्टनरशिप है वही एक फ्यूचरिस्टिक, मैं कहना चाहूंगा कि आगे की सोच का कदम माना जाएगा, क्योंकि जब तक देश के सारे विभिन्न तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कह लीजिए, इंडस्ट्रियल हाउसेस कह लीजिए, सरकार कह लीजिए, ये सारे एक साथ अगर आएंगे और पूरे देश का चौतरफा उन्नति के की दिशा में अपना अनुदान देंगे, तभी देश में मेरे ख्याल से एक उन्नति ठीक से हो पाएगी। और अगर आप देखें तो सरकार ने जो 2-4 साल पहले मेरे ख्याल से 2020 के आसपास एक फाइनेंशियल शिप बिल्डिंग के लिए एक फाइनेंशियल व्हीकल लॉन्च किया था, तो वो भी सरकार की तरफ से एक कदम है कि ईज ऑफ बिजनेस जिसे बोलते हैं, कि अगर आपको किसी को शिप बिल्डिंग में जाना है, किसी को मैरीटाइम रिलेटेड किसी भी इंडस्ट्री में आपको पार्टिसिपेट करना है, तो ये एक कॉरपोरेशन है जिससे आप जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो भी इस फील्ड में जाना चाहते हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं और उनको सरकार की तरफ से भी मदद मिलेगी।
0: जी, सो प्रोफेसर मिश्रा, जैसे कॉमोडोर जोशी ने बताया कि पूरी तरह से सरकार ने एक बढ़ावा दिया है निजी क्षेत्र को, पोर्ट्स के जो सेक्टर है उसमें उतरने के लिए, हमारे अब 13 मेजर पोर्ट्स हैं और 200 से भी अतिरिक्त पोर्ट्स हैं। आप हमें बताएं कि ये जो एक बल दिया गया है बंदरगाहों के विकास पर, समुद्री जो इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर, कैसे देखते हैं आप इसको, कितना इम्पोर्टेंट है ये हमारे लिए, हमारे आर्थिक सशक्तिकरण के लिए?
2: भारत में आर्थिक विकास की जो गति है और आर्थिक हमारी जो हर साल की जो सालाना हमारी आर्थिक विकास, आर्थिक प्रगति की जो परसेंटेज है, वो कंसिस्टेंटली एक हाई लेवल पर पहुंच चुकी है। भारत सरकार ने पिछले 2 दशकों में, खासतौर से पिछले 12 सालों में, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, कनेक्टिविटी को लेकर के, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जैसे कमोडोर जोशी ने कहा, इन तमाम क्षेत्रों में सरकार ने अपनी नीतियों को बहुत स्पष्ट तौर पर सामने रखा है कि सरकार का रोल एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने का है। एक ऐसा एनवायरनमेंट तमाम जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं उनके लिए और आम इंसान के लिए भी, ऐसा एनवायरनमेंट सामने रखना जिसमें कि वो अपनी जो उनकी क्षमताएं हैं उनका विकास कर सकें। तो सरकार का काम एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है, जिसमें मुझे लगता है कि सरकार ने पूरी तरह से अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित किया है। इस इनेबलिंग एनवायरनमेंट के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि देखिए व्यापार के लिए किसी भी देश की या राज्य की सरकार व्यापार में सीधे तौर पर नहीं उतरती है, अगर वो एक कम्युनिस्ट सरकार ना हो तो, ऐसा जो वातावरण बनता है उसमें प्राइवेट सेक्टर को सीधे तौर पर एक स्टेक होल्डर के तौर पर उतरना पड़ेगा। और इसलिए मुझे लगता है कि जैसे भारत की आर्थिक प्रगति हो रही है और भारत से मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस उभर रही हैं और उनका व्यापार बढ़ रहा है दुनिया के तमाम कोनों से, उसको ध्यान में रखते हुए प्राइवेट सेक्टर की पार्टनरशिप बहुत आवश्यक थी। और भारत के, जैसा आपने कहा कि भारत के बड़े जो बंदरगाह हैं, 13 बंदरगाह हैं, लेकिन 200 छोटे बंदरगाह भी हैं, इनको कैसे पूरी तरह से समेकित रूप से इनका विकास कैसे किया जाए, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता थी। मुझे लगता है कि जो भारत का जो मैरिटाइम विजन 2030 है या मैरिटाइम अमृतकाल 2047 है, उसको ध्यान में रखते हुए एक समग्र और समेकित विकास की आवश्यकता रही है। और उसके विकास के लिए ही मुझे लगता है बंदरगाह से जुड़ा हुआ या पोर्ट लेड डेवलपमेंट जिसकी हम बात करते हैं, वो आवश्यक एक जरूरत थी और वो पूरी तरह से निखर के आ रही है सामने। दूसरा एक बड़ा पहलू है कि भारत के जो बंदरगाह हैं, हम देखते हैं कि जो पूर्वी क्षेत्र के बंदरगाह हैं और पश्चिमी क्षेत्र के बंदरगाह हैं, दोनों में पहला तो पूर्व और पश्चिम के बंदरगाहों के बीच में क्षमता को लेकर के और उनका जो व्यापार है, एक जो टनेज का टर्नओवर है, उसको ध्यान में रखते हुए ही पूर्व और पश्चिम में बहुत अंतर है। पश्चिम के पोर्ट बहुत विकसित हैं और मुंबई का जो बंदरगाह है उस पर बहुत ज्यादा लोड था, और इसको ध्यान में रखते हुए गुजरात के जो नए बंदरगाहों का अपग्रेडेशन हो रहा है वो बहुत आवश्यक था। इसमें पूर्व और दक्षिण के बंदरगाहों पर भी काफी व्यापक स्तर पर काम हो रहा है। आगे आने वाले समय में भारत की विकास की गति को सामने रखते हुए इन बंदरगाहों के विकास पर भी काम होगा और तभी भारत एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में निखर कर सामने आ पाएगा।
0: बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि अब प्राइवेट पोर्ट्स भी बहुत मेजर हो गए हैं, अगर हम देखें पीपावाव या हजीरा या मुंद्रा, मुंद्रा अब बाय वॉल्यूम सबसे बड़ा पोर्ट है भारत में, और जो पोर्ट कैपेसिटी है उसमें बहुत बढ़ोतरी हुई है। 2014-15 में 1561 MTPA मिलियन टन पर एनम था।

0: और अब वो बढ़कर 2817 पर पहुंच गया है। और जो एवरेज टर्न अराउंड टाइम है वो भी 96 घंटों से कम होकर 49 घंटे आ गया है। आप हमें बता सकते हैं कॉमोडोर जोशी की जो ये एवरेज टर्न अराउंड टाइम है ये कितना इंपॉर्टेंट है और ये किस तरह से एफिशिएंसी बढ़ाता है, जो पोर्ट लेड डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं उसको गति देता है?
1: आपने बिल्कुल सही आंकड़े दिए हैं। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि ये टर्न अराउंड टाइम अभी थोड़ा और भी शायद कम हो रहा होगा, क्योंकि जो सरकार का बेसिक अगर आप एक उद्देश्य मान लें कि टर्न अराउंड टाइम कम करने से पोर्ट में ज्यादा जहाज आएंगे, ज्यादा माल की ढुलाई होगी, ज्यादा माल उन पे लोड किया जाएगा, तो ये पूरा का पूरा जो काम होता है उससे पोर्ट का जो टर्नओवर कहते हैं आप, मुनाफा कहते हैं फाइनली, वो बढ़ेगा। तो अगर पहले क्या होता था, ये सारे जहाज जाते थे, दो दो तीन तीन दिन एक पोर्ट में ये रहते थे, सामान की आवाजाही हो रही है, कंटेनर उतर रहे हैं, कंटेनर चढ़ रहे हैं, तो

0: टर्नओवर कहते हैं आप, मुनाफा कहते हैं फाइनली, वो बढ़ेगा। तो अगर पहले क्या होता था, ये सारे जहाज जाते थे दो दो तीन तीन दिन एक पोर्ट में, ये रहते थे, सामान की आवाजाही हो रही है, कंटेनर उतर रहे हैं, कंटेनर चढ़ रहे हैं, तो ये दो तीन दिन का टाइम लगता था। तो अभी अगर जैसे आपने बताया कि ये समय बहुत कम हो गया है, तो उस हिसाब से अगर देखें, दैट में अगर एक दिन में ये काम हो रहा है, तो ये पहले 3 दिन में होता था, अभी एक दिन में तीन जहाज निकल गए, पहले एक ही जहाज निकलता 3 दिन में। तो उस हिसाब से टर्नओवर पर शिप अगर देखें तो 3 टाइम्स हो गया है। उस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक पूरा जो आर्थिक अपनी जो गति है देश की, उसके लिए बहुत ही ज्यादा एक पैमाना है, टर्नओवर टाइम कितना है और इसको कौन देखता है। ये जो कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस है, वर्ल्ड बैंक का ये कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस का इंडेक्स है,
1: जी
0: वो ये सारे मेजर करके ये देखते हैं कि कौन कौन कैसे परफॉर्मेंस चल रही है इन सब चीजों में।
1: जी
0: एक ये पैमाना, उसके अलावा बहुत भी होंगे। अगर आप देखें इनका जो लेटेस्ट इंडेक्स आया हुआ है, उसमें टॉप 30 में हमारे तीन पोर्ट्स आ रहे हैं। जैसे आपने सही बोला, मुंद्रा पोर्ट है गुजरात का, पारादीप पोर्ट है उड़ीसा में, और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है मुंबई का। ये
1: जी
0: तीन पोर्ट टॉप 30 में भारत के हैं। तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा देश के लिए ये एक गर्व करने की बात है कि ये हमारा देश एक ऐसी दिशा में जा रहा है जो थोड़ा वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से अच्छी मानी जाएगी।
1: जी बिल्कुल। इसी संदर्भ में हम आपसे जानना चाहेंगे प्रोफेसर कि जब हम बात करते हैं पोर्ट लेड डेवलपमेंट की या जो लॉजिस्टिक्स है समुद्री यातायात, तो उसमें कौन कौन से ऐसा कार्गो है जो बहुत हमारे लिए क्रिटिकल है, हमारे देश के लिए, जो समुद्री जो रास्ते हैं उनसे वो उसकी आवाजाही होती है और जिसके कारण ये जो समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर है इस पर इतना बल दे रही है सरकार।
2: यहाँ कुछ मूलभूत बातें हैं जिनको समझना आवश्यक है
1: जी
2: हमारे लिए भी और श्रोताओं के लिए भी, कि भारत का और दुनिया का अधिकतम व्यापार 90-95% से ज्यादा व्यापार वो शिपिंग रूट से ही होता है, समुद्री जहाजों से होता है, क्योंकि वो सस्ता पड़ता है और उससे ज्यादा माल की ढुलाई हो सकती है। इस बात को हम ध्यान रखें। पहली चीज ये है कि जितना तेल और गैस का व्यापार होता है वो सारा व्यापार समुद्री जहाजों के माध्यम से होता है, जितना हैवी कार्गो जाता है वो भी समुद्री जहाजों के माध्यम से जाता है, और इसके साथ ही साथ भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनसे आने वाले खाद्य पदार्थों का आयात और निर्यात भी समुद्री क्षेत्र से होता है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि अगर ये समुद्री यातायात की जो ये जो लाइफ लाइन्स हैं, इनको
1: जी
2: अगर रोक दिया जाए तो दुनिया में व्यापार ही नहीं, दुनिया का चलना मुश्किल हो जाएगा। और ये हमने जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्राइसिस में हमने ये बात देखी कि जब वहां से जहाजों का आवागमन रुका या उस पर एक तरह से नियंत्रण लगा, तो दुनिया के तमाम देश, फिलीपींस और इंडोनेशिया जैसे देशों में ऊर्जा को लेकर के बहुत बड़ा संकट हो गया। भारत ने इस संकट को बहुत अच्छे से टैकल किया, ये एक प्रशंसनीय बात है, लेकिन हमने देखा कि कैसे दुनिया के तमाम देशों पर ऊर्जा के क्षेत्र में जो अपने को बहुत ही स्वावलंबी मानते हैं, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश, उनके लिए भी यह स्थिति बहुत ही चिंताजनक हो गई थी। तो
1: जी
2: इसलिए कार्गो के क्षेत्र में हम देखते हैं कि रोजमर्रा की जरूरतों के साथ साथ आयरन और स्टील जैसी चीजें, रबड़ जैसी चीजें जो औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक हैं, लोगों के जीवन में जो खाद्य पदार्थ हैं या जो सामान उनके आम जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जरूरी होते हैं उनकी भी, तो किसी भी देश की आर्थिक प्रगति, उसका एक सस्टेनेबल रहना और उसकी जो जनता है, उसके जो नागरिक हैं, उन लोगों का जीवन भी सुगम रूप से चले, इस सभी के लिए मैरिटाइम रूट्स और शिपिंग रूट्स की आवश्यकता है।
1: और कॉमोडोर जोशी, जैसा कि प्रोफेसर मिश्रा ने बताया कि हमारे रोजमर्रा के जीवन के लिए, एक आम नागरिक के लिए जो जरूरत की चीजें हैं उनके लिए भी ये जो समुद्री कारोबार है कितना जरूरी है। अगर हम मैरिटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आप नेवी में रहे हैं तो आप बता सकते हैं हमें कि इसी संदर्भ में ये जो आवाजाही भी सुगम रूप से बनी रहे, मैरिटाइम सिक्योरिटी का कितना बड़ा एक एस्पेक्ट है जो हर देश के लिए और खासकर अब जब भारत की बात कर रहे हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट है।
0: आपने एक जो एक पॉइंट निकाला है मैरीटाइम सिक्योरिटी का, वो एक बहुत ही अहम मुद्दा है। आज से नहीं, पिछले 15-16 साल से, जब ये दुनिया में जब इनका हुतीज जो थे या यहाँ पे जो हाईजेक हो रहे थे जहाज, और उनसे रैंसम मांगी जाती थी और पूरा का पूरा जहाज बोर्ड कर लिया जाता था, और समुद्री जो लुटेरे होते हैं वो आते थे एंड अभी भी आते हैं, और उसके कारण 2008 के करीब से भारतीय नौसेना ने इस एरिया में पेट्रोलिंग शुरू की थी, और वो पूरा का पूरा जो जो एंट्री पॉइंट्स हैं ये मिडल ईस्ट के, उसमें बहुत सारे देशों का एक कंसोर्टियम टाइप आप कह सकते हैं, उनके सारे जहाज अपने अपने वहां पे पेट्रोलिंग करते थे, टर्न बाय टर्न आते थे, और काफी अच्छी पेट्रोलिंग के कारण ये जो समुद्री लुटेरे आते थे उनका जो इवेंट्स थे, इंसिडेंट

0: सारे बहुत कम हो गए। अभी अगर आप देखें ये क्यों हुआ ये सारा, जब तक आपके पास नौसेना का बल नहीं है, आप अपने सी लेन्स जो समुद्री रास्ते हैं, समुद्री जहाजों के आने जाने के लिए जो रास्ते बने हुए हैं, वो आप सिक्योर नहीं कर सकते, वो खुले पड़े रहेंगे। कोई भी आएगा रास्ते पे आपके जहाजों को वो लेके जाएगा, रैंसम मांगेगा या जो भी करेगा आगे। वो सिक्योर तभी हो सकते हैं जब नौसेना के जहाज उन सी लेन्स को सिक्योर करे। तो एक ये जो एक काम है भारतीय नौसेना का, एक प्रमुख काम है, पीस टाइम वर्क कह सकते हैं आप, कि जब युद्ध ना चल रहा हो तो ये एक मेजर काम रहता है। और
1: जी
0: हमारे जहाज कंटिन्यूअसली वहां पिछले इतने सालों से पेट्रोलिंग कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, दो दो तीन तीन जहाज होते हैं वहां पे। तो उसके कारण मेरे ख्याल से आप ये कह सकते हैं कि अगर देश की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो रही है तो उसके लिए एक सशक्त नौसेना का होना बहुत जरूरी है।
1: जी
0: और मेरे ख्याल से पिछले करीब करीब कुछ सालों में सरकार ने ये काम किया हुआ है। अगर आप जहाजों का थ्रूपुट देखें, जो नेवी के जहाज बन रहे हैं, वो काफी सारे जहाज लॉन्च हुए हैं, काफी सारे जहाज कमीशन हुए हैं और बहुत मॉडर्न जहाज हैं। आज की तारीख में भारतीय नौसेना जो है वो एक सशक्त और आप कह सकते हैं नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हम बोलते हैं
1: जी
0: इंडियन ओशन रीजन, तो जिसमें अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल भी आ जाता है। तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर एंड नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर भारतीय नौसेना को माना जाता है।
1: बिल्कुल, बहुत ही जरूरी है दोनों का पैरेलल विकास जिस पर पूरा बल दिया गया है पिछले कुछ वर्षों में। प्रोफेसर मिश्रा, अगर आपके पास आए तो सागरमाला प्रोग्राम जो सरकार का 2015 में शुरू हुआ पोर्ट लेड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए, जिसमें मैकेनाइजेशन, जो आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी का जमाना है तो डिजिटल सिस्टम्स को पोर्ट ऑपरेशंस में इनकॉर्पोरेट करना, मल्टी मोडल कनेक्टिविटी, इस सबको आप कैसे देखते हैं? ये जो एक कहें कि फोकस्ड एफर्ट है सरकार का।
2: देखिए, सागरमाला जो परियोजना 2015 में जिसको लॉन्च किया गया, उसके पीछे जो महत्वपूर्ण उसके उद्देश्य थे वो ये थे कि भारत के तमाम बंदरगाह पुरानी तकनीक पर चल रहे थे, जिसमें बहुत ज्यादा ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट था और उसमें बहुत ज्यादा जो पुराने किस्म के तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा था। सागरमाला परियोजना के तहत ये बात की गई कि बंदरगाहों का न सिर्फ उनका आधुनिकीकरण करना है, बल्कि बंदरगाहों के बीच में आपस में कनेक्टिविटी हो। और एक बार जब किसी जहाज से, किसी कार्गो या कंटेनर शिप से जब माल वो बंदरगाह पर डॉक होता है, तो वहां से रोड कनेक्टिविटी कैसी है, और तमाम बंदरगाहों के साथ एक ये भी समस्या भारत में पहले रही है कि उनके लिए जो इनेबलिंग इकोसिस्टम है वो नहीं था, तो उसके विकास के लिए भी सागरमाला परियोजना में ध्यान दिया गया। साथ ही साथ इस इकोसिस्टम में ये बात की गई कि किसी भी बंदरगाह में सिर्फ यही नहीं होना चाहिए कि वहां पर एक पोर्ट फैसिलिटी है, डॉकिंग फैसिलिटी है और वहां पर सामान उतर गया, उस सामान का स्टोरेज कैसे हो और वो अत्याधुनिक तकनीक पर कैसे बेस्ड हो। तटीय शिपिंग और अंतर्देशीय जो परिवहन है, चाहे वो जल परिवहन हो, चाहे वो रोड परिवहन हो, या रेलवे के रास्ते जाए, उसको कैसे विकसित किया जाए, और खास तौर से जो इनलाइन वाटरवेज हैं
1: जी
2: उनके विकास की कोशिशें की गई। तो सागरमाला परियोजना मुझे लगता है कि एक बहुत क्रांतिकारी कदम रहा है पोर्ट लेड डेवलपमेंट के क्षेत्र में भारत में, और इसने भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको भी बहुत तेजी से दुनिया की तमाम जो अग्रणी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनसे कॉम्पीट करने और उनके बराबर चलने की क्षमता प्रोवाइड की है। 845 परियोजनाओं को नामांकित किया गया था 2015 में और उनमें से 315 परियोजनाएं अभी पूरी हो चुकी हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि सागरमाला इनिशिएटिव, जैसा कि नाम भी खुद ये बताता है, कि ये तमाम जो भारत के बंदरगाह हैं उनको एक माला की कड़ियों की तरह जोड़ना है, जिससे कि उन तमाम बंदरगाहों में आपस में भी कनेक्टिविटी रहे, एक कोऑर्डिनेशन रहे, अत्याधुनिक तकनीक से वो जुड़े रहें, कम्युनिकेशन और उन कोऑर्डिनेशन की उनमें लगातार एक सुगम यातायात रहे, और साथ ही साथ इस पूरी बंदरगाहों के विकास और उनके अत्याधुनिकीकरण के साथ साथ भारत के आम नागरिक, छोटे जो व्यापारी हैं, जो लोग पर्यावरण संबंधी मुद्दों से जुड़े हुए हैं या जो लोग टूरिज्म से जुड़े हुए हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से जुड़े हैं, उनके लिए भी ऐसी व्यवस्थाएं और ऐसी परियोजनाएं चलाना कि वो भी जब बंदरगाहों का विकास हो और ज्यादा माल ढुलाई हो, व्यापार बढ़े, तो वो लोग भी इस विकास का फायदा उठा सके और उसमें अपना योगदान दे सके।
1: बिल्कुल, और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी कम हुए हैं, समय जो लगता था उस सामान को पहुंचाने में वो भी कम हुआ। आपने इनलैंड वाटरवेज की बात करी, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटिस्टिक्स है हमारे सामने कि लगभग 700% बढ़े हैं कार्गो मूवमेंट इनलैंड वाटरवेज में। सो इस संदर्भ में जो हमारा कहें कि जो वाराणसी मल्टी मोड टर्मिनल है, जो पहला मल्टी मोड टर्मिनल है गंगा नदी पर, जो गवर्नमेंट की जल मार्ग विकास परियोजना है, ये आपको कितना इम्पोर्टेंट लगता है? जैसा आप कह रहे थे कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम कर

0: करने के लिए और जो समय है उसको भी कम करने के लिए?
1: देखिए, इनलैंड वाटरवेज भारत में उनकी परिकल्पना बहुत पहले से रही है, लेकिन इनलैंड वाटरवेज का उतनी अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं हो सका। और क्योंकि भारत में गंगा नदी, मुख्य रूप से गंगा नदी के रास्ते बनारस से लेकर वाराणसी से लेकर कलकत्ता तक का एक वाटरवे बनता है,
0: जी
1: जिसमें तमाम जो छोटे और बड़े शहर हैं वो उसके साथ जुड़ सकते हैं। आज जो इनलैंड वाटरवेज वन की बात हो रही है, जिसमें वाराणसी को एक बहुत प्रमुख स्थान दिया गया, क्योंकि सीधे इस इनलैंड वाटरवे के माध्यम से भारत के उत्तरी जो राज्य हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, तमाम ये जो प्रदेश आते हैं जो किसी भी तरह से किसी भी बंदरगाह से या समुद्र तट से जुड़े नहीं हैं, उनके लिए कैसे ये व्यवस्था की जाए
0: जी
1: कि वो भी पोर्टलेट डेवलपमेंट में हिस्सेदार बने और उनके जो निर्यात के सामान है या उनके लिए जो सामान बाहर से आ रहा है उसको कैसे जल्दी से जल्दी पहुंचाया जा सके। क्योंकि देखिए, शिपिंग में और जो समुद्री व्यापार है, ये वैसे ही है, एक बहुत अच्छा उदाहरण तो नहीं है, लेकिन किसी व्यक्ति को जब हार्ट अटैक आता है तो उसके जो 3 घंटे और 4 घंटे होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसी तरह जब कोई माल, खासतौर पर खाद्य पदार्थ, जब वो किसी बंदरगाह पर डॉक होता है, जब उसको उतारा जाता है, वहां से कितनी जल्दी वो बाजार पहुंच सके, मार्केट में पहुंच सके, लोगों के पास पहुंच सके, ये बहुत महत्वपूर्ण है। खाद्य पदार्थों के मामले में ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि अगर वो 48 घंटे और 72 घंटे के बाद पहुंचेगा तो आधे से ज्यादा सामान खराब हो जाएगा। भारत के उत्तरी राज्यों के लिए ये एक विशेष चिंता की बात है, क्योंकि जैसे अगर हम आम, क्योंकि उत्तर भारत के तमाम प्रदेशों में आम निर्यात करने की कोशिश होती है, उनके लिए ये हमेशा से एक समस्या रही है कि उनके जो एक्सपोर्ट आइटम्स है वो अंतरराष्ट्रीय मार्केट तक पहुंचने से पहले ही सड़ जाते थे। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इनलैंड वाटरवेज पर खास ध्यान दिया जाए और उनको विकसित किया जाए। और इसीलिए मुझे लगता है कि वाराणसी मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट या नमो घाट और तमाम जो परियोजनाएं वाराणसी में चल रही हैं, उनका एक बहुत दूरगामी परिणाम होगा इनलैंड वाटरवेज को आगे बढ़ाने में और उनके योगदान को बढ़ाने में, पोर्टलेट डेवलपमेंट की जो संकल्पना है भारत की आर्थिक विकास।
0: आपने बहुत ही खूबसूरत एनालॉजी देकर हमें ये बात समझाई है। कॉमोडोर जोशी, आपके पास हम आते हैं। विजिंगजाम इंटरनेशनल डीप वाटर मल्टीपर्पज सी पोर्ट जो केरला में विकसित हुआ है, 2015 में ये इनॉग्रेट हुआ, कैसे देखते हैं आप इसको? ये ग्लोबल सी रूट से हमें कनेक्ट करने के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये?
2: जी, अगर आप थोड़ा नक्शे पे ध्यान दें दुनिया के, तो आज की डेट में एक प्रोसेस बोला जाए, एक तो ट्रांसशिपमेंट का एक प्रोसेस है और वो सिंगापुर आज की डेट में सबसे बड़ा एक पोर्ट है जिसमें ये सबसे ज्यादा ट्रांसशिपमेंट होती है। ट्रांसशिपमेंट का मतलब ये है कि जो बड़े बड़े जहाज बहुत सारा सामान लेके आते हैं उनको पूरा का पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करना मतलब कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता है, बहुत ज्यादा उसकी कीमत लगती है। तो क्या किया जाता है कि समझिए आप सिंगापुर का एग्जांपल ले रहे हैं, जो ईस्टर्न साइड से सामान आ रहा है वो सिंगापुर में छोटे जहाजों में जाएगा, कंपैरेटिवली छोटे जहाजों में, और फिर वो बाकी वेस्टर्न साइड की तरफ मतलब हिंदुस्तान की तरफ मलाका स्ट्रेट से होता हुआ इस तरफ आएगा या फिर मिडल ईस्ट या जो भी अफ्रीका में जाना है वो जाएगा। तो एक प्रोडक्शन सेंटर है, एक ट्रांसशिपमेंट सेंटर है। अगर हमारी ज्योग्राफी देखा जाए, पेनिनसुलर कंट्री बोलते हैं अपने को, एंड ये जो विजिंगजाम इंटरनेशनल सी पोर्ट बन रहा है ट्रिवेंड्रम में
0: जी,
2: वो एक डीप वाटर पोर्ट है। एक 20 से 24 मीटर का ड्राफ्ट मिलता है वहां पे, स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है और इंटरनेशनल शिपिंग लेन्स जो है ये उसके बहुत करीब है। इनफैक्ट जो सिंगापुर से लेके जो पर्शियन गल्फ की तरफ लेन जा रही है, मलाका स्ट्रेट से पर्शियन गल्फ की तरफ, वो तो इसके बिल्कुल साथ से होती हुई जाती है। और जो स्वेज कैनाल की तरफ जो लेन जा रही है वो इससे करीब 20 से 30 नॉटिकल माइल, अगर किसी को विजिंगजाम पोर्ट में आना होगा तो 20 से 30 माइल का डायवर्जन लेना पड़ेगा। तो ये लोकेशन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें क्या होगा कि जो समझिए आप मिडल ईस्ट से, यूरोप से, मेडिटेरियन से स्वेज कैनाल के थ्रू होते हुए जहाज इधर आ रहे हैं वो सारे के सारे ट्रांसशिपमेंट अपने यहाँ हो सकती है और फिर यहाँ से जहाज या तो लोकल डिस्ट्रीब्यूशन में इस्तेमाल होंगे या फिर ईस्टर्न साइड ऑफ द वर्ल्ड जाएंगे। सो मेरे ख्याल से ये जो एक दूरगामी जो परिणाम है इसका वो काफी आगे देखने को मिलेगा, क्योंकि जो 24-25 में करीब करीब 1.2 मिलियन TEUs जो यूनिट होती है, 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट बोली जाती है, वो इसका थ्रूपुट हो चुका है। और जब फेज टू और फेज थ्री खत्म होएगा 2028 तक
0: जी,
2: तो उस टाइम पे जो इनका जो एम है, टारगेट है, एक विजन है कि 4.5 मिलियन TEU से ऊपर का व्यापार होगा।

0: यहाँ पे, और फाइनल फेज 2040 में 7.2 मिलियन TEUs का होने का उद्देश्य है इस बात का।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं जनसेवा से देश सेवा श्रृंखला, और आज हमारी चर्चा का विषय है बंदर का समुद्र और नई आर्थिक शक्ति। और हमारे साथ दो विशेषज्ञ आज इस कार्यक्रम में शामिल हैं, कॉमोडोर केडी जोशी, डिफेंस एनालिस्ट, और प्रोफेसर राहुल मिश्रा, स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट। प्रोफेसर मिश्रा, आपके पास आते हैं एक जो बहुत ही रोचक और कहें कि बहुत ही उपयोगी ग्रास रूट्स लेवल पे जो प्रोग्राम है समुद्र तट के विकास को लेकर गुजरात ने, जहां पे सबसे ज्यादा लंबी कोस्ट लाइन है, सागर खेड़ू सर्वांगी विकास योजना जो 2007 में शुरू की गई, इसको आप कैसे देखते हैं, जिसमें लगभग 13,000 जो कोस्टल विलेजेस हैं वहां पर बिजली पहुंचाने की और उसको निर्बाध रूप से पहुंचाने की व्यवस्था पर बल दिया गया है?
2: देखिए, ये जो परियोजना है सागर काठा के तमाम जो जिले हैं जिसमें कच्छ, जामनगर, पोरबंदर, जूनागढ़ और तमाम भावनगर, अहमदाबाद, ये सभी उसमें आते हैं। इन तमाम शहरों के साथ एक समस्या ये थी कि जो बुनियादी ढांचा है, चाहे वो बिजली की आपूर्ति हो या पीने के पानी की सतत आपूर्ति हो, इन तमाम मुद्दों पर जो सामुद्रिक क्षेत्र का विकास होता है, खारे पानी के प्रवेश को रोकना, एक गुजरात के तमाम बंदरगाहों के साथ एक समस्या ये है कि क्योंकि वहां पर हाई टाइड के साथ बहुत ज्यादा सिल्टिंग हो जाती है और जो गाद आ जाती है उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। बहुत पहले के समय में, आज से 1000 साल पहले भी, जब लोथल एक मानव निर्मित जब बंदरगाह बनाया गया था सिंधु घाटी सभ्यता के समय, आज से 3000 साल पहले, बल्कि उससे भी ज्यादा, तब भी यही समस्या आई थी कि बहुत सारी गाद जो है वो बंदरगाह और उसके रास्ते उस क्षेत्र के अंदर आ गई। तो खारे पानी के साथ साथ इन तमाम समस्याओं से निपटने के लिए इस योजना का की संकल्पना की गई, और मूलभूत तौर से इसका उद्देश्य ये है कि जो लोग, जो जनता इन बंदरगाहों के आसपास रहती है, जो इन बंदरगाहों से होने वाले व्यापार और इन बंदरगाहों के सुचारू रूप से चलाने के लिए जिनकी जरूरत है, उनकी जो डेली लाइफ की जो आवश्यकताएं हैं उनको कैसे पूरा किया जा सके, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके लिए इंटरनल पीपल सेंट्रिक कनेक्टिविटी को कैसे जोड़ा जाए, उनके लिए पीने का पानी कैसे मुहैया कराया जाए और तमाम इन समस्याओं से कैसे निपटा जाए, इसके लिए इस परियोजना को चलाया गया था। तो इसका फोकस बहुत ही लोकलाइज था, लेकिन इसका इम्पैक्ट मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि ये किसी भी बंदरगाह के लंबे समय तक और सुदृढ़ रूप से चलने के लिए बहुत आवश्यक है।
1: कह सकते हैं एक तरह से मॉडल है। और सागरमाला के तहत 11 जो फिशिंग हार्बर प्रोजेक्ट्स हैं, जिसके तहत 30,000 जो मछुआरे हैं उनको फायदा हुआ है, आपको लगता है ये भी बहुत होलसम होलिस्टिक अप्रोच है?
2: जी बिल्कुल, दुनिया के तमाम देश जिन्होंने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण किया है और उनके विकास पर ध्यान दिया है, उन्होंने ये भी देखा है कि जो छोटे मछुआरे हैं, जो लोकल अर्थव्यवस्था है, वो बंदरगाहों पर जो निर्भर है या तटीय क्षेत्रों पर निर्भर है, उनको कैसे इस बंदरगाह के विकास में या पोर्ट लेड डेवलपमेंट में से जोड़ा जा सके, क्योंकि बहुत समय ऐसा होता है, और ऐसे भी उदाहरण है दुनिया के तमाम बंदरगाहों के जहां बहुत तेजी से विकास हुआ, बहुत तेजी से उनको डेवलप किया गया और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बंदरगाह बन गए, लेकिन जो जनता उससे जुड़ी हुई थी वो कहीं ना कहीं मार्जिनलाइज हो गई। इन तमाम सागरमाला के तहत इन तमाम जो जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके पीछे एक बड़ा उद्देश्य ये है कि जब हम आर्थिक प्रगति और आर्थिक विकास की बात कर रहे हैं, ज्यादा बड़े इंडस्ट्रियलाइजेशन और बहुत ज्यादा आयात और निर्यात की बात कर रहे हैं, तो हम आम जनता के कंसर्न्स और उनकी जरूरतों को कहीं पीछे ना छोड़ दें। तो ये एक बहुत ही होलिस्टिक, बहुत ही समेकित परियोजना है सागरमाला, और इसके तहत मुझे लगता है कि जनता विकास के साथ साथ आर्थिक प्रगति दोनों को जोड़ने की कोशिश की गई।
1: बिल्कुल कॉमोडोर जोशी, अभी प्रोफेसर मिश्रा ने एक मेंशन किया लोथल जो गुजरात में, वहां पर जो नेशनल मैरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बन रहा है, क्योंकि ये एंशंट जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वहां डॉकयार्ड था 4,500 वर्ष पुराना, तो ये जो हमारी एक हिस्ट्री है मैरिटाइम हिस्ट्री, उसके लिए आपको लगता है कि ये एक बहुत बड़ा, उसको शोकेस करने का और पूरे देश के गौरव के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है? कहा जा रहा है ये विश्व का सबसे बड़ा मैरिटाइम म्यूजियम होगा जब ये बन जाएगा तो।
0: जी सोलो जी, बिल्कुल सही आप दिशा में आपने जो बोला है, ये जो 4,500 साल पहले जब ये बनाया गया था, इसमें एक ड्राई डॉक भी होता था, तो मतलब आप सोचिए कि कितना एडवांस वो सिटी होगा जिसमें एक जहाजों को अंदर लाके ड्राई डॉकिंग की भी फैसिलिटी बनाई गई हुई थी। तो उस हिसाब से मैरिटाइम कल्चर जो बोलेंगे, या फिर इंडियन सिविलाइजेशन का या इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो मैरिटाइम कल्चर था, वो कहीं ना कहीं आज की डेट में हम सारे, हमारे देश के लोगों को थोड़ा सा, हमें जानकारी नहीं है, हमें उस चीज का ज्ञान नहीं है। और मेरे ख्याल से जब ये नेशनल मैरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जब बन के पूरा हो जाएगा, ये दो फेजेज में बन रहा

0: और पहला फेज में फेज ए और फेज बी भी है। जब ये पूरा हो जाएगा मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही आकर्षक जगह होने वाली है, जिसमें अपने आप में ये एक डेस्टिनेशन हो जाएगा कि आप लोग वहां पे जाएंगे और एक मैरिटाइम जो हेरिटेज है
1: जी
0: उसको कैसे हिंदुस्तान ने प्रिजर्व किया है, और आज पास्ट, आज की डेट में और फ्यूचर, ये तीनों कैसे इंटीग्रेट होके उस जगह पे दिखाए जाएंगे, ये मेरे ख्याल से जनसाधारण के लिए ये एक अच्छी परियोजना जो है वो स्थापित हुई है। और जब
1: जी
0: ये कंप्लीट हो जाएगी मेरे ख्याल से एक ये बहुत ही अच्छा एक आप कह सकते हैं एक दर्शनीय स्थल हो जाएगा लोगों के लिए, वहां पे भी जाना बहुत आवश्यक हो जाएगा।
1: प्रोफेसर मिश्रा, आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नेदरलैंड्स और वियतनाम के साथ मिलकर उनसे भी लिया जा रहा है टेक्निकल एडवाइस, तो कैसे देखते हैं आप इस प्रोजेक्ट को?
2: मुझे लगता है इसमें दो चीजें हमें ध्यान में रखनी है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है, विकसित भारत 2047 में भारत को एक आर्थिक महाशक्ति ही नहीं बनना है, भारत को अपने जो इतिहास को प्रेजेंट करने में जो गलतियां की गई हैं उनको भी सुधारना है। तमाम तथाकथित इतिहासकार जो भारत के हैं और भारतीय इतिहास पर लिख चुके हैं, वो ये हमेशा से कहते आए हैं कि भारत कभी एक मैरिटाइम नेशन नहीं रहा है, ये तो एक कॉन्टिनेंटल देश रहा है जिसने कभी समुद्री यातायात या समुद्री सुरक्षा को ध्यान में नहीं रखा। इस नैरेटिव को एक सिरे से नकारने के लिए और इस डिबेट को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए मुझे लगता है इस मैरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स की स्थापना जरूरी थी। और क्योंकि ये इस बात को सामने रखता है कि आज से 5,000 साल पहले भी भारत एक समुद्री महाशक्ति था, भारत के पास उस समय की सबसे अत्याधुनिक तकनीक थी, जब हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक बड़ा स्थान रखते थे, हमने मानव निर्मित एक बंदरगाह बनाया जिसको आज फिर रिवाइव करने और उसको एक हेरिटेज कॉम्प्लेक्स में रखने की बात हो रही है। और इससे यह भी सिद्ध होता है कि लोथल, जो कि अहमदाबाद शहर का हिस्सा है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में कितना बड़ा उसका योगदान रहा है। और इसमें आपने जो बात कही नेदरलैंड्स और वियतनाम के साथ सहयोग की, ये दोनों देश भी, वियतनाम और नेदरलैंड्स, दोनों ही देश ऐतिहासिक रूप से बहुत बड़े पोर्ट्स को लेकर के और अंतरराष्ट्रीय
1: जी
2: समुद्री व्यापार को लेकर के वो हमेशा से ही बड़े एक्टर्स और बड़े प्लेयर्स रहे हैं। तो उनके साथ सहयोग मुझे लगता है इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि हम कलेक्टिवली अपनी जो हमारी जो साझा विरासत है उसको भी हम सामने लेकर के आए। और इस लिहाज से एक यूरोपीय देश और वियतनाम, जो कि जिसकी अपनी 5,000 साल की एक ग्लोरियस उसका
1: हिस्ट्री
2: इतिहास
1: है।
2: है, उसको भी सामने रखना बहुत जरूरी।
1: कॉमोडोर जोशी, जैसा आप दोनों ने ही बताया कि कितना हमारा ग्लोरियस इतिहास है, मैरिटाइम इतिहास, उसको दर्शाया जाएगा, और साथ ही साथ आपको लगता है कि बहुत होलिस्टिक अप्रोच है सरकार का कि विरासत का गौरव उसको बनाए रखना, साथ ही साथ जो मैरिटाइम इंडिया विजन 2030 जिसकी बात अभी प्रोफेसर मिश्रा भी कर रहे थे, जिसमें 150 से ज्यादा पहले हैं, 3 से 3.5 लाख करोड़ रुपए की, और जिसमें पिछले वर्ष का लगभग 70,000 करोड़ रुपए का पैकेज शिप बिल्डिंग का भी शामिल है, और न सिर्फ ये, मैरिटाइम अमृतकाल विजन भी 2047, उसको भी सरकार ने ऑलरेडी उसके बारे में सोचा है एक दूरगामी सोच के साथ। कितना आपको ये अप्रोच, कहें कि ऑलराउंड अप्रोच लगता है?
0: बिल्कुल, एक चौतरफा सोच मेरे को दिखती है पूरे इसमें, क्योंकि आप देखिए बंदरगाहों को डेवलप करना, कोस्टल कम्युनिटी को साथ में लेके चलना, जो प्रोफेसर साहब अभी बोल रहे थे कि कई बार मार्जिनलाइज हो जाती है जो लोकल लोग रहने वाले हैं,
1: जी
0: वो बड़ी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है लेकिन लोकल लोगों को उनकी सुविधाओं का, उनकी जरूरतों का थोड़ा सा ध्यान नहीं रख पाते हैं बहुत बार। लेकिन अगर आप देखें ये सारे के सारे जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, चाहे MIV के तहत हो, चाहे MAKV के तहत हो, या चाहे फिर सागरमाला के तहत हो, पांचवा जो पिलर है सागरमाला का
1: जी
0: वो है कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट का पिलर है। मतलब पूरा का पूरा एक फंडामेंटल पिलर यही बोल रहा है कि जो हमारी जो कोस्टल कम्युनिटीज है, नॉट सिर्फ पोर्ट में नहीं, सिर्फ बंदरगाहों में नहीं, पूरी कोस्ट में, उन सबको साथ में लेके हमको डेवलप करना है
1: जी
0: और उनका ध्यान जरूर रखना है। और उसके लिए अगर आप देखिए तो अगर डेवलपमेंट कोस्ट में हो रही है, पोर्ट्स पे हो रही है, तो जो सरकार ने इतना जो बजट आउटले किया हुआ है 3-3.5 लाख करोड़ रुपए का MIV के लिए और करीब करीब 80 लाख करोड़ रुपए का इसके लिए MAKV के लिए, तो ये सारा का सारा बजट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पोर्टलेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो सागरमाला के तहत एक और पिलर माना जाता है, जिसमें इस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में कोस्टल इको जोन्स, कोस्टल इको यूनिट्स एंड साथ में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनेंगे, उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाई जाएंगी, और पोर्ट कनेक्टिविटी जो थोड़ी देर पहले जिक्र हुआ था कि कैसे की जाए, तो अभी जिक्र में यही आया कि इनलैंड वाटरवेज के थ्रू समझिए पोर्ट कनेक्टिविटी हो रही है, समझिए आपका जो नेशनल वाटरवे 1 बन रहा है जो वाराणसी

0: और अल्दिया को कनेक्ट कर रहा है। तो हिंटरलैंड जो इंडिया की है, वो उनको एक, जिसे बोलते हैं, उनका दरवाजा खुल गया है समुद्री रास्ते के लिए, क्योंकि इनलैंड वाटरवेज बननी शुरू हो गई हैं। और वैसे ही अगर आप देखे हैं, कुछ दिन पहले एक ट्रायल रन हुआ था एक वेस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर का, जिसमें एक कंटेनर ट्रेन चलाई गई थी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से लेकर
1: जी
0: वडोदरा तक। तो अभी आप देखें कि मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट में हिंदुस्तान ने जो पहला कदम लिया है, पहला देश है जिसने एक बिजली की जो ट्रेन है उसमें डबल डेकर कंटेनर सिस्टम अपनाया है। बाकी
1: जी
0: पूरे दुनिया में सिंगल कंटेनर सिस्टम जाते हैं, मतलब एक के ऊपर एक दो कंटेनर नहीं रखे जाते हैं। तो ये जो ट्रेन गई है, करीब मेरे को लगता है 300 350 कंटेनर यूनिट से लेके गई थी, काफी लंबी ट्रेन थी ये, और ये एक पायलट प्रोजेक्ट माना जा सकता है। और
1: जी
0: ये सारी चीजें इन तीन प्रोग्राम्स के तहत हो रही है। और अगर आप देखेंगे कि अपनी जो लोकल सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, उनकी जानकारी के लिए मैरिटाइम कॉम्प्लेक्स बन रहा है,
1: बिल्कुल
0: सागर खेड़ू जो सर्वांगी विकास योजना थी गुजरात की, वो
1: जी
0: एक मॉडल था, उसके हिसाब से पूरे देश में वो मॉडल अभी अडॉप्ट हो रहा है किसी ना किसी स्कीम में। और उसके बाद में जो पोर्ट्स बन रहे हैं, बड़े बड़े पोर्ट्स बन रहे हैं, इनफैक्ट रेंजम पोर्ट है, लेकिन अगर आप वाधवान पोर्ट देखें
1: जी
0: महाराष्ट्र में जो बन रहा है, वो एक और पोर्ट है,
1: जी
0: गलातिया बे का जो पोर्ट है अभी, वो तो बहुत ही स्ट्रेटेजिक पोर्ट माना जाएगा, जो अंडमान में बना रहे हैं, जो करीब करीब सिर्फ 40 मील है मलाका स्टेट से। तो
1: जी
0: आप
1: जी
0: देखिए कि आप कैसे पूरा देश में हर जगह पे, पूरी देश की पूरी जो लैंड मास है वो कवर हो रहा है, जो भूमि है देश की, सब जगह कहीं ना कहीं
1: बिल्कुल
0: मैरीटाइम डेवलपमेंट हो रही है, चौमुखी विकास लग रहा है मुझे।
1: जी बिल्कुल कॉमोडोर जोशी, प्रोफेसर मिश्रा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमारी समुद्री अर्थव्यवस्था के समग्र विकास से देश के आर्थिक सशक्तिकरण पर प्रकाश डालने के लिए।
0: धन्यवाद जी, शुक्रिया।
2: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 27वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा, समुद्र, बंदरगाह और नई आर्थिक शक्ति। इसमें भाग ले रहे थे रक्षा विश्लेषक कोमोडोर केडी जोशी और रणनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर राहुल मिश्रा। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद।

0: ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం సమయం 12 గంటలు కావస్తుంది. మరికొద్ది క్షణాల్లో హిందీలో వార్తలు. ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి రిలే.
1: నమస్కార్, ఆకాశవాణి సమాచార్ కే సాథ్ మే ప్రియాంక అరోడా. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि लागत संबंधी पहलुओं के साथ साथ वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में विश्वास और साइबर सुरक्षा का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है. आज नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री वैष्णव ने कहा कि भारत का लक्ष्य सेमीकंडक्टर डिजाइन, निर्माण और तैयार उत्पादों के परीक्षण में विश्वसनीय भागीदार के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करना है. श्री वैष्णव ने कहा कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है. पिछले 5 वर्षों में भारत का सार्वजनिक ऋण सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में 61% से घटकर 55% रह गया है. उन्होंने कहा कि देश का लक्ष्य वित्तीय, आर्थिक और तकनीकी क्षेत्रों में मजबूती लाना है. श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए काम कर रही है, जिससे वैश्विक अनिश्चितता के माहौल में भी निरंतर विकास सुनिश्चित किया जा सके. वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने पिछले 4 वर्षों में 38 विकसित देशों के साथ प्राथमिकता आधारित व्यापार समझौते किए हैं. आज नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री गोयल ने कहा कि भारत का लक्ष्य भारतीय व्यवसायों के लिए बाजार पहुंच को बढ़ाना और देश के बाजारों को वैश्विक साझेदारों के लिए खोलना है. उन्होंने बताया कि 2014 से पहले भारत के व्यापार समझौतों में लगभग 10 ट्रिलियन डॉलर के संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद GDP वाली अर्थव्यवस्थाएं शामिल थी, जो अब बढ़कर लगभग 70 ट्रिलियन डॉलर हो गई हैं. श्री गोयल ने कहा कि भारत कनाडा, मेक्सिको, मर्कोसुर, यूरेशिया और कई अन्य देशों के साथ व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है. उन्होंने बताया कि भारत विश्वसनीय साझेदारियों की तलाश में है. केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राष्ट्रीय जहाज निर्माण मिशन के तहत देश के जहाज निर्माण उद्योग को सहायता देने के लिए ऋण जोखिम बीमा की 2 विशेष योजनाओं की घोषणा की है. मुंबई में 21वीं समुद्री राज्य विकास परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए श्री सोनोवाल ने कहा कि जहाज निर्माण एक बड़ा और कई वर्षों तक चलने वाला कार्य है. इसे बढ़ावा देने के लिए सरकार बीमा प्रीमियम पर सब्सिडी देगी और बीमा दावों की स्थिति में बीमा कंपनियों को प्रत्यक्ष सहायता भी प्रदान करेगी. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और आसियान एक शांतिपूर्ण, स्थिर और स्वतंत्र हिंद प्रशांत क्षेत्र में समान हित साझा करते हैं. नई दिल्ली में आज आसियान भारत रक्षा थिंक टैंक फोरम को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि आसियान भारत के हिंद प्रशांत दृष्टिकोण का केंद्र है. श्री सिंह ने कहा कि हिंद महासागर और दक्षिण पूर्व एशिया का जल क्षेत्र परस्पर जुड़ा हुआ समुद्री क्षेत्र है, जिससे इसकी सुरक्षा एक साझा जिम्मेदारी बन जाती है.
2: हमें अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत समुद्री डकैती, मानव तस्करी, अवैध मछली पकड़ने और अन्य खतरों से निपटने के लिए मिलकर काम करना चाहिए. इन प्रयासों में समुद्री सूचना केंद्रों के बीच नियमित संवाद, नौसेना और तटरक्षक बलों के बीच सहयोग तथा खोज बचाव, आपदा राहत और समुद्री बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए संयुक्त अभ्यास शामिल हो सकते हैं.
1: दिल्ली की विशेष अदालत ने आज CJP नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका को 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. वहीं पार्टी के एक अन्य नेता अजिंक्य शिंदे को निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया है. दिल्ली पुलिस ने तीनों नेताओं को जंतर मंतर में प्रवेश करने की कोशिश के आरोप में हिरासत में लिया था.

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में। अजीत का नमस्कार और जोहार। श्रोताओ, सुविचार या अच्छे विचार हमेशा हमारे लिए प्रेरणा का कारण होते हैं और जीवन में सही राह पर चलने में हमारी सहायता करते हैं। तो आइए सुनते हैं आज का सुविचार। भेजने वाले हैं माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी। लिखते हैं, वक्त चाहे कितना भी बदल जाए, अपने संस्कार कभी मत बदलिए, क्योंकि पहचान नाम से नहीं इंसान के व्यवहार से बनती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत विचार के लिए। आपको हमारा आभार। आइए अब जानते हैं किन किन श्रोताओं ने हमें भेजा है संदेश और क्या क्या लिखा है। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू जी का। लिखते हैं, उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम को बहुत बहुत बधाई। मैं आपका कार्यक्रम नियमित रूप से सुनता हूं और आपका कार्यक्रम मुझे बहुत पसंद आता है। अगला संदेश हमें मिला है चांदनी चौक गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की, विकी, नानू और रविन्द्र रौनक सेन। लिखते हैं, उमंग कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता भाई अजीत जी और बहन विमलेश जी को सादर अभिवादन। नमस्कार। आपके द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम वाकई काबिले तारीफ रहते हैं, अतः हम बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करते हैं। हम हैं सेन परिवार छत्तीसगढ़ से। सेन परिवार का उमंग कार्यक्रम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आभार कि आप हमारे कार्यक्रम को सपरिवार सुनते हैं। अगला संदेश हमें मिला है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी का, राजाजी नगर बेंगलोर से एन आर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी का, गांव पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया जी का, खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी। लिखते हैं, सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी, उमंग कार्यक्रम सुन रहे हैं। शिक्षाविद अबला बोस जी पर कार्यक्रम सुना एवं बहुत ही पसंद आया। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए सर अजीत जी एवं मैडम विमलेश जी, हम आपका दिल की गहराइयों के साथ हृदय से आभार प्रकट करते हैं, साथ ही साथ एनसीईआरटी की पूरी तकनीकी टीम को। आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। तो श्रोताओं, चलिए एक बार फिर से चलते हैं आविष्कारों की दुनिया में। खासकर उन आविष्कारों की चर्चा इस सप्ताह हम कर रहे हैं जिनके बारे में अक्सर हम सोचते भी नहीं कि उनका भी आविष्कार हुआ होगा। तो श्रोताओं, आज हम बात करेंगे पेंसिल के बारे में। एक पतली सी लकड़ी और बीच में काला सिक्का, इससे हम जो चाहे लिख लें या स्केच बना लें। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इसकी खोज कैसे हुई होगी? तो श्रोताओं, ये है छोटी पेंसिल की कहानी और इसकी कहानी है बड़ी तूफानी। चौंकिए मत, मैंने कहा इसकी कहानी तूफानी है, क्योंकि पेंसिल का जन्म ही एक भयंकर आंधी तूफान के कारण हुआ था। तो जरा पूछिए ना, वो कैसे? तो मैं आपको बताता हूं। बात है 1564 की। इंग्लैंड के बोरोडेल नाम के एक इलाके में जोरदार आंधी आई। एक विशाल पेड़ जड़ से उखड़ गया। जब बाद में स्थानीय चरवाहे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि उखड़े हुए पेड़ की जड़ों के नीचे एक अजीब काले रंग का चमकदार पत्थर दबा हुआ था। जब उन्होंने उसे छुआ तो उनके हाथ थोड़े काले हो गए। उन्होंने पाया कि उस पत्थर से किसी भी चीज पर आसानी से लगभग काला गाढ़ा निशान बन जाता है। तो श्रोताओं, आपको पता है सबसे पहले उसका क्या इस्तेमाल हुआ? उसका इस्तेमाल हुआ भेड़ों की पीठ पर निशान लगाकर अपनी अपनी भेड़ों को पहचानने का। वे चरवाहे उसका उपयोग अपनी भेड़ों की पहचान करने के लिए करने लगे।

लेकिन उस समय एक मजेदार गलतफहमी भी हुई। वैज्ञानिकों को लगा कि ये काला पदार्थ सीसे यानी लेड का कोई नया रूप है। उन्होंने इसे नाम दे दिया ब्लैक लेड। इसी दुविधा में हम आज भी इसे कभी कभी लेड पेंसिल भी कह देते हैं, जबकि सच्चाई ये है श्रोताओं, ये वैज्ञानिक सच्चाई है कि इसमें सीसा रत्ती भर भी नहीं होता। तो वास्तव में वो था क्या, आइए जानते हैं साथियों। वो था ग्रेफाइट, यानी शुद्ध कार्बन का एक रूप। अब समस्या ये थी कि ग्रेफाइट बहुत मुलायम होता था, हाथ में पकड़ो तो हाथ काले और जरा सा जोर पड़ते ही टूट जाए। तो पहले लोगों ने इस पर थोड़ी मिट्टी मिलाई जिससे ये थोड़ा ठोस हो गया, फिर उन्होंने इससे लिखना शुरू किया। तो इस तरह शुरू हुई ग्रेफाइट से पेंसिल की पहली लिखाई। धीरे धीरे इस पर नवाचार होते रहे, प्रयोग होते रहे। फिर इटली के एक दंपत्ति ने सोचा कि इसे लकड़ी के खोल में बंद कर दिया जाए। उन्होंने लकड़ी का एक ठोस टुकड़ा लिया, बीच में पतली नाली बनाई और उसमें ग्रेफाइट को रख कर लिखने लगे, यानी आज की पेंसिल का ढांचा यहीं से आया। लेकिन अब भी लिखने में समस्या थी। तब मैदान में आए एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक निकोलस जैक्स कोंटे। उन्होंने ग्रेफाइट के चूरे को चिकनी मिट्टी, एक विशेष रसायन और पानी के साथ मिलाकर गूंथ लिया, उसकी पतली छड़े बनाई और उसे भट्टी में पका दिया। अब ये ठोस हो गई जिससे लिखने में आसानी होने लगी। जी हाँ, और सबसे रोचक बात ये हुई कि मिट्टी की मात्रा घटा बढ़ाकर उन्होंने पेंसिल को हल्का या गाढ़ा लिखने वाला बना दिया और उन्हें HB, 2B और 4B के नाम से वर्गीकृत कर दिया। HB आप अक्सर देखते होंगे पेंसिल्स में लिखा होता है HB, तो आज आपको बता दूं HB का अर्थ क्या होता है। HB यानी हार्ड ब्लैक, इसकी लिखावट मध्यम होती है। कुछ पेंसिलों में आप लिखा हुआ देखेंगे 2B, तो इसका अर्थ है ज्यादा गहरी लिखाई। इसे ड्राइंग के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। और आपने एक पेंसिल और देखी होगी, अगर आपको पेंसिल्स का शौक है तो आपने जरूर देखा होगा, लिखा होता है 4B। 4B का अर्थ होता है बहुत गहरी छाप वाली पेंसिल। तो साथियों, है ना मजेदार जानकारी। बस अब पेंसिल तो बन ही गई, समस्या थी कि लिखे हुए को मिटाना पड़े तो क्या किया जाए। पता है, पहले लोग पेंसिल की लिखावट मिटाने के लिए बासी ब्रेड के टुकड़ों का इस्तेमाल करते थे। फिर 1858 में एक अमेरिकी आविष्कारक हाइमन लिपमैन ने पेंसिल के पिछले सिरे पर रबर जड़ दिया और पेटेंट करा लिया। बस बन गई पूरी पेंसिल। तो साथियों, यहाँ तक की जानकारी तो मिल गई। अब कुछ बहुत रोचक है आपके लिए। क्या आपके मन में ये प्रश्न आता है कि पेंसिल नाम भला कैसे पड़ा? तो आपको बता दें, पेंसिल शब्द की जड़ लैटिन भाषा में है। उन दिनों में चित्र बनाने के लिए इस्तेमाल में आने वाले छोटे ब्रश को पेंसिलस कहते थे। बाद में जब ग्रेफाइट से लिखने वाले उपकरण का इस्तेमाल शुरू हुआ तो उसके लिए भी पेंसिल शब्द प्रचलित हो गया। तो श्रोताओं, ये थी तूफान, चरवाहों और वैज्ञानिकों के नवाचार की रोचक कहानी। अब तो भाई इस पेंसिल से लिखने में और भी अधिक मजा आएगा, है ना जी। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी पेंसिल के बारे में। आइए अब सुनते हैं आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है, पेंसिल नाम किस भाषा से आया है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, पेंसिल नाम किस भाषा से आया है? श्रोताओं, आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cieet.nic.in पर भेज सकते हैं। और हाँ, इंस्टा, लिंक्डइन, फेसबुक और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम भारत तू है हमको प्यारा।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम भारत तू है हमको प्यारा, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। श्रोताओं, भारत पाकिस्तान के युद्ध में असाधारण वीरता का प्रदर्शन करने वाले सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के जीवन पर आधारित इस कार्यक्रम में रोमांचक विवरण है कि किस प्रकार उन्होंने शत्रु पक्ष के कई टैंकों को ध्वस्त कर दिया और वीरगति को प्राप्त हुए। उन्हें इस साहसिक कार्य के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
1: साथियों, भारत भूमि ने एक से बढ़कर एक वीरों को जन्म दिया है जिन पर देश को नाज है। आइए आज याद करते हैं भारतीय सेना के एक ऐसे शहीद जांबाज की कुर्बानी, जिसको अपनी अद्वितीय बहादुरी के कारण भारत का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र मिला। भारत मां का ये सपूत था सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, जो जिया तो सिर्फ 20 साल, पर भारत की जनता के दिलों में उसकी यादों का दिया जलता रहेगा सालों साल। अरुण का जन्म 14 अक्टूबर 1950 को पूना में हुआ था। वे एक ऐसे परिवार से थे जिसका एक लंबा सैन्य इतिहास रहा है। अरुण का बाल्यकाल फौजी माहौल में बीता। अरुण जब 8 साल के थे तो वो सैनिकों के साथ खेलते, उनसे युद्ध की कहानियां सुनते और उन्हीं के साथ लंगर में जाकर खाना खाते। उनका जवानों के प्रति प्यार और फौज के प्रति रुझान देखकर साफ साफ पता चलता था कि अरुण ने भी फौज में भर्ती होने का मन बना लिया है। अरुण की प्रारंभिक शिक्षा उन विभिन्न स्थानों पर हुई जहां उनके पिता तैनात थे, पर अरुण के जीवन में एक निर्णायक अवसर वो भी था जब उसने सन 1962 में प्रसिद्ध सेंट लॉरेंस स्कूल सनावर में दाखिला लिया। अरुण की शिक्षा के अंतिम 5 वर्ष वहीं बीते। सनावर में बिताए उन 5 सालों में जैसे अरुण का व्यक्तित्व निखर सा गया। अपने स्कूल के बैंड में वे क्लैरिनेट बजाया करते थे।

0: अरुण ने इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने 23 जून 1971 को अपना पाठ्यक्रम पूरा किया। जून 1971 में उन्हें पूना हॉर्स रेजिमेंट में नियुक्ति मिली।
1: मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा।
2: साहब आप क्यों परेशान होते हो, हम कर लेंगे सफाई टैंक की।

0: अरे नहीं नहीं ना तो सही, अगर मैं टैंक चलाता हूँ तो उसकी देखरेख की जिम्मेदारी भी मेरी ही है।
1: वो तो ठीक है साहब,
0: और अगर मैं इसकी देखरेख नहीं कर सकता तो इस पर बैठने का भी कोई हक मुझे नहीं है।
1: वो तो ठीक है साहब, लेकिन
0: देखो नाथू सिंह, हम सब सैनिक हैं और हमारी पूना हॉर्स रेजिमेंट की परंपरा के अनुसार एक सच्चा सैनिक वही है जो किसी भी काम को छोटा ना समझता हो और हर काम को पूरी निष्ठा, ईमानदारी और लगन से करता हो।
1: बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है साहब, लेकिन
0: अरे लेकिन लेकिन कुछ नहीं, मुझे टैंक साफ करने दो।
2: अरुण सबके साथ बड़ी आसानी से घुल मिल जाते, चाहे वो अफसर हो या जवान। देर देर तक बैठकर दोस्तों के साथ गपशप करना उन्हें बेहद पसंद था, पर इसके साथ साथ वो कठिन से कठिन परिस्थितियों से जूझने को भी तैयार रहते। हारना और डर कर पीछे मुड़ना उन्होंने कभी नहीं सीखा, और इसी का परिचय दिया उन्होंने 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के समय।
3: माँ।
4: अरुण बेटा, तुम पहली बार युद्ध में जा रहे हो, कैसा लग रहा है?
3: मुझे काफी गर्व महसूस हो रहा है माँ। फौज में भर्ती होने के 6 महीने के अंदर ही मुझे अपने देश की सेवा का मौका मिल गया।
4: हाँ।
3: अब मौका मिलेगा मुझे कुछ कर दिखाने का।
4: बेटा एक बात याद रखना, तुम्हारे पूरे परिवार का एक शानदार सैन्य इतिहास रहा है।
3: जी।
4: ये चमचमाते हुए मेडल ये बताते हैं कि भारतीय सेना में तुम्हारे परिवार का कितना योगदान रहा है।
3: जानता हूं मां।
4: जाओ बेटा, इस मर्यादा को बनाए रखना और ऐसे लड़ना कि दुश्मन के गलियारों में भी तुम्हारी बहादुरी की चर्चा हो।
3: जी मां, आशीर्वाद दीजिए।
4: जाओ बेटा।
2: और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। दिन 16 दिसंबर 1971, स्थान बसंतर नदी का किनारा। दोनों सेनाओं में जम्मू कश्मीर के सामने वाले मैदानी इलाके शकरगढ़ में घमासान युद्ध चल रहा था।

0: जब सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल और उनके साथियों ने सुना कि हमारी फौज पर दुश्मन के टैंकों ने जवाबी हमला कर दिया है, तो वो अपने टैंक के साथ पूरे जोश के साथ सैनिकों की मदद के लिए आगे बढ़े। अभी वो आगे बढ़ ही रहे थे कि उनके टैंकों पर भी दुश्मन ने गोले बरसाने शुरू कर दिए। टैंकों का आक्रमण होते ही अरुण ने बड़ी फुर्ती से अपने टैंक का मुंह दुश्मन की ओर मोड़कर उन पर जबरदस्त हमला कर दिया। दुश्मन अरुण के इस घातक हमले को झेल नहीं पाया और पीछे हटने लगा। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण ने अपने टैंक की रफ्तार तेज कर उनका पीछा करना शुरू किया और दुश्मन के एक टैंक को नष्ट कर दिया। तभी पीछे से कमांडर का रेडियो पर आदेश आया,
1: सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण पीछे लौटो और स्क्वाड्रन की पोजीशन से आ मिलो, अब हम एकजुट होकर फिर से हमला करेंगे।
2: यस सर।
0: आदेश सुनकर अभी वे लौट ही रहे थे

0: कि तभी दुश्मन के टैंकों की पूरी स्क्वाड्रन ने उन पर धावा बोल दिया। सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल ने उनका सामना पूरी बहादुरी से किया। अभी सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल दुश्मनों से जूझ ही रहे थे कि दुश्मन का एक गोला उनके टैंक पर आ गिरा और टैंक में आग लग गई, जिससे वे बुरी तरह घायल हो गए। पीछे से फिर आदेश आया,
1: अरुण तुम्हारे टैंक में आग लगी है, उसे छोड़ो और पीछे आओ।
2: सर मैं अपना टैंक नहीं छोड़ूंगा, अभी मेरी गन काम कर रही है और दुश्मनों को ठिकाने लगाकर ही दम लूंगा।
0: युद्ध के इस महत्वपूर्ण मोर्चे पर अब उस क्षेत्र में केवल सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण ही अपने टैंक के साथ बचे थे। इसके बाद टैंकों का ऐसा भयानक युद्ध हुआ जो युगों युगों तक याद रखा जाएगा।
3: सर सर ये क्या, ये तो टैंकों की पूरी स्क्वाड्रन ही हमारी ओर बढ़ती चली आ रही है साहब।
2: इन्हें रोकना ही पड़ेगा। प्रयाग सिंह टैंक की रफ्तार तेज करो।
4: यस सर।
2: नाथ सिंह निशाना साधो।
3: यस सर। दाहिनी ओर का टैंक बिल्कुल हमारे टारगेट पर है सर।
2: फायर।
3: सर
2: ये तो क्या, अब दूसरों को देखता हूं। टर्न द गन टू द लेफ्ट।
4: जी।
2: फायर।
3: सर सर वो आखिरी वाला टैंक तो वापस मुड़ रहा है सर।
2: हाँ लगता है आक्रमण करेगा, निशाना साधो।
3: ठीक है सर।
0: दो टैंक आमने सामने खड़े थे, दोनों ने एक साथ एक दूसरे पर गोले दागे। और उसी विस्फोट में अरुण ने वीरगति पाई।

हालांकि सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का देहांत हो गया, लेकिन उनकी बहादुरी की वजह से वो दिन भारत का रहा। दुश्मन का एक भी टैंक भारतीय कब्जे वाले इलाके में घुस न सका। हमारी सेना ने उस दिन दुश्मन के 10 टैंक नष्ट किए, जिनमें 4 टैंक अकेले अरुण ने नष्ट किए थे। इस बहादुरी भरे कारनामे के लिए अरुण को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: साथियों, खेत्रपाल परिवार के लिए कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। कुछ सालों बाद एक विचित्र घटना घटी, जिसके विषय में हमने उनके पिता ब्रिगेडियर मदनलाल खेत्रपाल से चर्चा की और उन्होंने जो कुछ भी बताया हम उसे आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं।
1: कुछ सालों बाद मुझे संदेशा मिला कि पाकिस्तान का एक ब्रिगेडियर मुझसे मिलना चाहता है। क्योंकि मैं उनके नाम से परिचित नहीं था, इसलिए मिलने की कोशिश भी नहीं की। अरुण की यादों के सहारे समय बीतता गया और 2001 की बात है, मेरा मन हुआ जाकर अपना जन्म स्थान सरगोधा देखाऊं, जो पाकिस्तान में है।

0: और मैं रवाना हो गया। और देखिए कैसा संयोग था कि मेरी मुलाकात उसी पाकिस्तानी ब्रिगेडियर से हुई। उन्होंने मेरी मेजबानी का दायित्व संभाला और मुझे मेरे पैतृक गांव की यादगार यात्रा कराई। मैं उनके घर करीब 3 दिन ठहरा। ज्यों-ज्यों मेरा लौटने का समय नजदीक आता गया, त्यों-त्यों हमारी मित्रता गहरी होती गई। पर समय समय पर ऐसा लगता था कि कुछ बात अभी बाकी है, और वो क्या थी मैं समझ नहीं पा रहा था। बात करते करते बीच में रुकना, उनके परिवार के लोगों की आंखों में करुणा, विदाई के एक दिन पहले हम सब ने एक साथ भोजन किया। सोने का समय हो चला था। अभी हम सोने जा ही रहे थे कि ब्रिगेडियर ने कहा, सर मैं वर्षों से आपसे कुछ कहना चाहता हूं, पर कैसे कहूं यह समझ नहीं आ रहा। यह बात आपके बेटे अरुण के बारे में है। मैंने उनसे पूछा कि तुम अरुण के बारे में जानते हो? उन्होंने कहा, जी बहुत अच्छी तरह से। जिस बहादुरी की वजह से उसकी घर घर में चर्चा होती है वो नजारा मैंने अपनी आंखों से देखा है। याद आता है वो दिन जब शकरगढ़ की उस युद्धभूमि पर 2 टैंक आमने सामने खड़े थे, जिसमें से एक टैंक में था आपका बेटा अरुण और दूसरे में और कोई नहीं, मैं ही था। हम दोनों ने एक साथ एक दूसरे पर गोले दागे, पर नियति को शायद यही मंजूर था कि मैं जिंदा हूं और अरुण शहीद हो गया। मैंने जो किया वो मेरा काम था, पर सिपाही होने के साथ साथ मैं एक इंसान भी हूं। और जब मुझे पता चला कि उस समय अरुण सिर्फ 21 साल का था, तो उस घटना ने मुझे बड़ी बुरी तरह से झकझोर दिया। जिस बहादुरी से आपके बेटे ने अपनी मातृभूमि की रक्षा की, उसके लिए मैं उसे सलाम करता हूं। मेरे लिए ऐसे व्यक्ति का सामना करना जिसने मेरे पुत्र की हत्या की थी आसान नहीं था, पर उस समय मेरे जहन में बस यही पंक्तियां आई, हिंद के सैनिक तुझे प्रणाम, सारी दुनिया में तेरा नाम, दुश्मन के गलियारे में भी होती है तेरी चर्चा आम, सलाम सलाम।
1: सीमा प्रहरी
2: और अब इसी कार्यक्रम के साथ हम अपने आज के उमंग प्रसारण को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, कुसुमलता, चेतना, अर्शद, प्रसून और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सुमन संजय कुमार जी के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: एनसीईआरटी वारी प्रायोजित कार्यक्रम

0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और पुख्ता अज़्म के साथ ये सफर आगे बढ़ा है और ये सिलसिला आज भी जारी है। सेवा और सुशासन के उनके नजरिए से रहनुमाई हासिल करते हुए सरकार 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने की समत लगातार काम कर रही है। अपनी खसूसी सीरीज के तहत आज हम इस बात का तज़किरा कर रहे हैं कि किस तरह इस नज़रिए ने भारत की तरक्की और कौमी सलामती के इकदामात में अहम सुतून की हैसियत रखने वाले स्ट्रेटेजिक एतबार से अहम सरहदी इलाकों के बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम बनाया है।
1: अरुणाचल प्रदेश की सेला टनल इस नजरिए के तई अहद बस्तगी की एक नुमाया मिसाल है। ये टनल स्ट्रेटेजिक एतबार से अहम है। तवांग खित्ते को हर तरह के मौसम में कनेक्टिविटी फराहम करती है। इस टनल को 9 मार्च 2024 को वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क के नाम वक्फ किया था और ये सरहदी सड़कों की तंजीम BRO की तरफ से बुनियादी ढांचे से मुतालिक मुकम्मल किया गया एक तारीखी प्रोजेक्ट है। अरुणाचल प्रदेश के सेला टनल तकरीबन 13,000 ऊंचाई पर बनाई गई है और ये शुमाली हिमालयी खित्ते के दुश्वार गुजार रास्तों में इंजीनियरिंग की काबिल जिक्र कामयाबी को जाहिर करती है। ये टनल खास तौर पर बर्फबारी और दुश्वार मौसमी हालात में अरुणाचल प्रदेश के तेजपुर और तवांग के दरमियान ज्यादा काबिल एतबार कनेक्टिविटी फराहम करती है। जम्मू से गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शोएबा।
0: वजीर खारजा डॉक्टर ए जयशंकर ने आज कहा है कि दरमियानी ताकतों के दरमियान तय पाने वाले कवायद व जवाबित पर अमल दरामद में इत्तिफाकी राय, बाहमी मफाहमत और मुश्तरका मफादात क्लीदी रोल अदा करेंगे। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम से खिताब करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि अब वो दौर खत्म हो चुका है कि जब कोई मुल्क धमकियों के जरिए दूसरे मुल्कों पर अपनी शराइत मुसल्लत करता था। उन्होंने उजागर किया कि दुनिया एक नए बैन अल-अक़वामी निज़ाम की जानिब बढ़ रही है जिसमें ज्यादा तादाद में ममालिक आलमी मामलात में ज्यादा मौसर रोल अदा कर रहे हैं। दिल्ली हुकूमत ने एक करारदाद मंजूर करके वजीर आजम नरेंद्र मोदी को अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल करने की मुबारकबाद पेश की है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आला रेखा गुप्ता ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मुल्क के शहरियों के मियार जिंदगी को बेहतर बनाने, तरक्की को फरोग देने और रियासतों की तरक्की को तेज करने के लिए अनथक मेहनत करने पर मुबारकबाद दी है। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराइकल में आज तेज बारिश की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात ने जुमे तक हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और मगरबी राजस्थान में गरज चमक के साथ झालावारी की भी पेशगोई की है। मर्दों के क्रिकेट में आज हैदराबाद में भारत और वेस्ट इंडीज के दरमियान 5 T20 बैन अल-अक़वामी मैचों की सीरीज का चौथा मैच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। भारत ने इतवार को इंदौर में तीसरे T20 मैच में वेस्टइंडीज को 14 रन से हराकर 2-1 की सबकत हासिल कर ली थी। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत आसियान मुश्तरका तहकीकी एजेंडा तैयार करने और बहरी सिक्योरिटी और उभरती टेक्नोलॉजीज पर तवज्जो मरकूज करने की तजवीज दी है। वजीर खारजा डॉक्टर ए जयशंकर ने कहा है कि दुनिया नए बैन अल-अक़वामी निज़ाम की जानिब बढ़ रही है। कई ममालिक आलमी मामलात में वसी तर रोल अदा कर रहे हैं। मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा है कि मुल्क का सरकारी कर्ज का तनासुब मजमूई घरेलू पैदावार GDP के मुकाबले में 61% से कम होकर 55% रह गया है। इस साल सितंबर में थोक कीमतों के इशारे की अफरात जर बढ़कर 11.39% हो गई है। भारतीय मौसमियात महकमे ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराइकल में आज शदीद बारिश की पेशगोई की है। और क्रिकेट में आज हैदराबाद में भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान चौथा T20 बैन अल-अक़वामी मैच खेला जाएगा। इसी के साथ खबरें खत्म हुईं।

0: मुख्य समाचार। भारत ने समुद्री सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित संयुक्त भारत आसियान अनुसंधान एजेंडा विकसित करने का प्रस्ताव रखा। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने कहा, विश्व एक नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, जिसमें कई देश वैश्विक मामलों में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भारत की थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति इस वर्ष सितंबर में बढ़कर 11.39% हुई। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान और भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 क्रिकेट मैच आज हैदराबाद में। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत और आसियान देशों के बीच रक्षा सहयोग मजबूत करने के लिए संयुक्त शोध, तकनीकी साझेदारी और समुद्री सुरक्षा पर मिलकर काम करने का प्रस्ताव रखा। नई दिल्ली में आयोजित आसियान भारत रक्षा थिंक टैंक फोरम में रक्षा मंत्री ने कहा कि आतंकवाद, साइबर अपराध, समुद्री चुनौतियों और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सभी देशों को साथ आना होगा। उन्होंने कहा कि भारत और आसियान सदस्य देशों के शांतिपूर्ण, स्थिर और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझा हित हैं और भारत के हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में आसियान का महत्वपूर्ण स्थान है।
1: भारत और आसियान हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता, समृद्धि और खुले समावेशी सहयोग के पक्षधर हैं। आसियान भारत की हिंद प्रशांत नीति के केंद्र में है। भारत की एक्ट ईस्ट नीति तथा सागर और महासागर की परिकल्पनाएं खुले और बहुध्रुवीय सहयोग को बढ़ावा देती हैं, जिन्हें भारत आसियान में नेतृत्व वाले मंचों के माध्यम से आगे बढ़ाता है।
0: श्री सिंह ने कहा कि हिंद महासागर और दक्षिण पूर्व एशिया के समुद्री क्षेत्र आपस में जुड़े हुए हैं, जिससे इसकी सुरक्षा साझा जिम्मेदारी है।
1: हमें अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत समुद्री डकैती, मानव तस्करी, अवैध मछली पकड़ने और अन्य खतरों से निपटने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। इन प्रयासों में समुद्री सूचना केंद्रों के बीच नियमित संवाद, नौसेना और तटरक्षक बलों के बीच सहयोग तथा खोज बचाव, आपदा राहत और समुद्री बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए संयुक्त अभ्यास शामिल हो सकते हैं।
0: श्री सिंह ने समुद्री आपदा मोचन पर अभ्यास सत्र और ड्रोन रोधी समाधानों पर संयुक्त अध्ययन जैसे पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का सुझाव दिया। श्री सिंह ने चर्चाओं को जारी रखने के लिए संवाद को बढ़ावा देने की बात कही। श्री राजनाथ सिंह ने आसियान देशों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन और अंतरिक्ष आधारित प्रणालियों जैसी प्रौद्योगिकियों पर सहयोग करने के लिए आमंत्रित किया। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने कहा है कि मध्यम शक्ति वाले देशों द्वारा तय नियमों को लागू करने में सहमति, आपसी समझ और साझा हित महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मध्यम शक्ति वाले देशों यानी मिडल पावर से आशय अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सहयोग में महत्वपूर्ण भूमिका रखने वाले देशों से हैं। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में डॉ. जयशंकर ने कहा कि धमकियों के माध्यम से दूसरे देशों पर अपनी शर्तें थोपने का युग समाप्त हो गया है। उन्होंने कहा कि विश्व नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, जिसमें कई देश वैश्विक मामलों में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान बदलाव को एक अलग प्रकार की व्यवस्था के विकास के रूप में देखा जाना चाहिए।
2: अब हम एक नई वैश्विक व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें देशों की हिस्सेदारी बदल रही है और निर्णय लेने में उनकी भूमिका बढ़ रही है। दुनिया किस दिशा में आगे बढ़ेगी, इस पर अब अधिक देश सक्रिय रूप से चर्चा कर रहे हैं। यह नई व्यवस्था भले ही पूरी तरह व्यवस्थित न हो और उसमें कुछ उलझने हो, लेकिन यह पुराने अनुभवों, देशों के अपने हितों और व्यवस्था बिगड़ने के संभावित परिणामों की चिंता को ध्यान में रखकर विकसित होगी।
0: विदेश मंत्री ने कहा कि भारत विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश है, जिसकी जीडीपी लगभग $4 ट्रिलियन है और इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने पिछले 4 वर्षों में 38 विकसित देशों के साथ वरीयता आधारित व्यापार समझौते किए हैं। आज नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री गोयल ने कहा कि भारत का लक्ष्य भारतीय व्यवसायों के लिए बाजार पहुंच को बढ़ाना और देश के बाजारों को वैश्विक साझेदारों के लिए खोलना है। श्री गोयल ने कहा कि भारत कनाडा, मेक्सिको, मर्कोसुर, यूरेशिया और कई अन्य देशों के साथ व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है।
3: From $10 trillion of GDP,
4: भारत को 2014 तक कई

0: देशों के बाजारों में विशेष व्यापारिक पहुंच हासिल थी, जिनकी कुल अर्थव्यवस्था लगभग 10 ट्रिलियन डॉलर थी। आज भारत के व्यापार समझौतों के दायरे में लगभग 70 ट्रिलियन डॉलर की संयुक्त अर्थव्यवस्था वाले देश शामिल हैं। हमारा लक्ष्य 115 ट्रिलियन डॉलर की वैश्विक अर्थव्यवस्था में से 85 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था वाले देशों के बाजारों तक भारत की पहुँच बढ़ाना है।
1: श्री गोयल ने भारत अमेरिका संबंधों पर कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध बेहद महत्वपूर्ण है और राजनीतिक विचारधारा में बदलाव के बावजूद ये और मजबूत होंगे।
0: भारत के संबंध अमेरिका के साथ कई अहम क्षेत्रों में मजबूत हैं। इनमें व्यापार, रक्षा, तकनीक, महत्वपूर्ण खनिजों और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क जैसे क्षेत्र शामिल हैं। हम कई स्तरों पर अमेरिका के साथ संवाद कर रहे हैं। भारत और अमेरिका के संबंध बेहद महत्वपूर्ण हैं और आने वाले समय में इनके और मजबूत होने की उम्मीद है।
1: केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव

0: स्तरों पर अमेरिका के साथ संवाद कर रहे हैं। भारत और अमेरिका के संबंध बेहद महत्वपूर्ण हैं और आने वाले समय में इनके और मजबूत होने की उम्मीद है।
1: केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि लागत संबंधी पहलुओं के साथ साथ वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में विश्वास और साइबर सुरक्षा का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। आज नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री वैष्णव ने कहा कि भारत का लक्ष्य सेमीकंडक्टर डिजाइन, निर्माण और तैयार उत्पादों के परीक्षण में विश्वसनीय भागीदार के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करना है। श्री वैष्णव ने कहा कि सतत विनिर्माण के लिए संपूर्ण तंत्र विकसित करना आवश्यक है।
2: मटेरियल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट।
3: सेमीकंडक्टर के लिए जरूरी सामग्री का पूरा तंत्र विकसित करने में काफी समय और मेहनत लगती है, इसलिए भारत में हमें इस दिशा में विशेष प्रयास करने होंगे। इसमें सामग्री की पहचान और समझ से लेकर उसे संभालने, बनाने, प्रसंस्करण, भंडारण और चिप सहित अन्य विनिर्माण प्रक्रियाओं में इस्तेमाल करने की क्षमता विकसित करना शामिल है। हमारा लक्ष्य ऐसा तंत्र तैयार करना है जो भारत के लिए भी उपयोगी हो और पूरी दुनिया के लिए भी।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है। पिछले 5 वर्षों में भारत का सार्वजनिक ऋण सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में 61% से घटकर 55% रह गया है। उन्होंने कहा कि देश का लक्ष्य वित्तीय, आर्थिक और तकनीकी क्षेत्रों में मजबूती लाना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट @AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति इस वर्ष सितंबर में बढ़कर 11.39% हो गई है। अगस्त में ये 9.92% थी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार खनिज तेल, खाद्य पदार्थों, कच्चे पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला और धातुओं की कीमतों में वृद्धि से थोक मुद्रास्फीति की दर बढ़ी है। रसायन, कपड़ा, रबड़, प्लास्टिक और बिजली के उपकरणों की कीमतों में बढ़ोतरी का भी इसमें योगदान रहा। दिल्ली की विशेष अदालत ने आज सीजेपी नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका को 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं अजिंक्य शिंदे को निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने कल राष्ट्रीय राजधानी में जंतर मंतर में घुसने की कोशिश कर रहे सीजेपी नेताओं दास, रांका और अन्य लोगों को हिरासत में लिया था। उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद उभरते विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन से पहले कल हरियाणा के करनाल स्थित केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान में कार्यक्रम आयोजित करेगी। इसमें कृषि प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रणालियों और पोषण के क्षेत्र में हो रहे नवाचारों पर मीडिया से संवाद होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आंध्र प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर विजयवाड़ा जाएंगी। वे आज शाम विजयवाड़ा के श्री कनक दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। राष्ट्रपति कल विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेला 2026 का उद्घाटन करेंगी। मेले में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वयं सहायता समूहों की 1500 से अधिक महिलाएं हिस्सा ले रही हैं। देश में वर्ष 2015 से 2024 के बीच टीबी के नए मामलों में 21% की कमी दर्ज की गई है, जबकि वैश्विक स्तर पर ये कमी 12% रही। एक बयान में सरकार ने कहा है कि टीबी के इलाज का दायरा बढ़कर 92% हो गया है, जबकि वैश्विक औसत 78% है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भारत में टीबी के मामलों में लगातार हो रही कमी यह दर्शाती है कि निरंतर प्रयासों, सामुदायिक भागीदारी और मजबूत जन स्वास्थ्य योजनाओं से सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत अब तक 28 करोड़ से अधिक लोगों की जांच की जा चुकी है। 20 लाख से ज्यादा लोगों को टीबी से बचाव की दवा दी गई है, जबकि 5,70,000 नए निक्षय मित्र इस अभियान से जुड़ चुके हैं। देश भर के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों और ज्यादातर निजी स्वास्थ्य केंद्रों में टीबी की जाँच और इलाज मुफ्त में कराया जाता है। वहीं टीबी के भारत की लड़ाई में लोगों की भागीदारी को और मजबूत करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जोश पहल की शुरुआत की है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। आज इस विशेष श्रृंखला में हम आपको बताएंगे

0: कि देश के विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सामरिक रूप से महत्वपूर्ण सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को कैसे मजबूत किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश में स्थित सेला सुरंग इसी संकल्प का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। प्रधानमंत्री मोदी ने 9 मार्च 2024 को इस सुरंग को राष्ट्र को समर्पित किया था।
1: अरुणाचल प्रदेश में लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सेला सुरंग पूर्वी हिमालय के दुर्गम क्षेत्र में इंजीनियरिंग कौशल की एक बड़ी मिसाल है। लगभग 825 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस परियोजना में दो सुरंगें हैं, जिनकी लंबाई लगभग 1,003 मीटर और 1,595 मीटर है। इस सुरंग का उद्देश्य असम के तेजपुर और अरुणाचल प्रदेश के तवांग के बीच हर मौसम में बेहतर संपर्क सुनिश्चित करना है। इससे भारी बर्फबारी और खराब मौसम के दौरान भी आवाजाही आसान होगी। सामरिक दृष्टि से ये सुरंग बेहद महत्वपूर्ण है। इससे ऊंचाई पर स्थित सेला दर्रे की चुनौतियों से निपटने और सीमावर्ती क्षेत्र में सेना के जवानों, सैन्य उपकरणों तथा आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही सुगम बनाने में मदद मिलेगी। इससे सेना की परिचालन तैयारियां भी मजबूत होगी। सुरंग से स्थानीय लोगों को भी लाभ होगा। बेहतर सड़क संपर्क से स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, बाजारों और अन्य जरूरी सुविधाओं तक पहुंच आसान होगी। साथ ही पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। सेला सुरंग दूरदराज और सीमावर्ती क्षेत्रों में आधुनिक बुनियादी ढांचे के विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ये परियोजना राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय विकास के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। जम्मू से गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में शुक्रवार तक ओलावृष्टि की संभावना है। अगले दो दिन में आंध्र प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, विदर्भ, हिमाचल प्रदेश, केरलम, दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में गरज के साथ बारिश हो सकती है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 क्रिकेट मैच आज हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 से आगे है। भारतीय सेना की असम रेजिमेंट के जवानों ने वेल्स में आयोजित कैम्ब्रियन गश्ती 2026 अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय सेना ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस चुनौतीपूर्ण सैन्य गश्ती अभ्यास में भारतीय टीम ने 100 से अधिक टीमों के साथ मुकाबला किया। ये अभ्यास इस महीने की 2 से 12 तारीख तक आयोजित किया गया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने समुद्री सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित संयुक्त भारत आसियान अनुसंधान एजेंडा विकसित करने का प्रस्ताव रखा। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा, विश्व एक नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, जिसमें कई देश वैश्विक मामलों में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भारत की थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति इस वर्ष सितंबर में बढ़कर 11.39% हुई। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 क्रिकेट मैच आज हैदराबाद में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी से है हैदराबाद केंद्र है। मध्यम लहरी 406.5 मीटर्स अर्थात 738 किलोहर्ट्स वर आणि न्यूज ऑन AIR या मोबाईल ॲपवर प्रसारित करीत आहोत आजचा आपला मराठी कार्यक्रम निशिगंध। सर्व रसिक श्रोत्यांना सीमा कुलकर्णीचा सप्रेम नमस्कार आणि साजरा करत असलेल्या शारदीय नवरात्रीच्या आपणा सर्वांना मनःपूर्वक शुभेच्छा। श्रोते हो, नवरात्र म्हणलं की डोळ्यासमोर उभं राहतं ते देवीचं तेजस्वी रूप, भक्तीनं भरलेलं वातावरण आणि सर्वत्र जाणवणारी श्रीशक्तीची अनुभूती। या 9 दिवसात आपण दुर्गेच्या 9 रूपांची मनोभावी पूजा करतो, पण ज्या शक्तीची आपण देवीच्या रूपात पूजा करतो तीच शक्ती आपल्या आजूबाजूंच्या स्त्रियांमध्येही आज आपल्याला पाहायला मिळते। आईच्या मायेपासून ते मुलींच्या स्वप्नांपर्यंत घराची जबाबदारी

0: यह आकाशवाणी, आप आकाशवाणी से खबरें सुन रहे हैं। यह आकाशवाणी हैदराबाद है, अब आप फयाज अहमद से उर्दू में इलाकाई खबरें सुनिए। सबसे पहले सुर्खियां। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने बताया कि मरकजी हुकूमत ने माजूर अफराद की पेंशन के लिए अहलियत के मेयार में नरमी करने का फैसला किया है। पेंशन की रकम में 25% इजाफा भी किया गया। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रम आर्का ने ऐलान किया कि 19 नवंबर से इंद्रम्मा जीवन बीमा स्कीम शुरू की जा रही है। रियासती वज़ीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने वाजे किया है कि हुक्मरान जमात और अपोजिशन के अरकान असम्बली के हलकों में किसी किस्म के इम्तियाज़ के बगैर तमाम अहल गरीब ख़ानदानों को इंद्रम्मा मकानात फरहम किए जाएंगे। और इलाकाई मौसमियाती मरकज़ के मुताबिक आज तेलंगाना में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। कल और परसों रियासत के बाद मकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश होने का इम्कान जाहिर किया। अब खबरें तफसील। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू आज आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में वाक़ इंदिरा किलाद्री कनका दुर्गा मंदिर में पूजा करेंगी। वह शाम 7:10 पर मंदिर पहुंचेंगी और खसूसी पूजा में शिरकत करेंगी। सदर जमहूरिया के दौरे के पेश नज़र मंदिर के हुकाम ने शानदार इस्तकबाल के इंतजाम किए हैं और सिक्योरिटी इंतजाम के तहत तकरीबन आधे घंटे तक आम अकीदतमंदों के दर्शन रोक दिए जाएंगे। हुक्काम ने अकीदतमंदों से अपील की है कि वह इस तब्दीली को मद्देनजर रखते हुए ताउन करें। पुलिस की जानिब से भी वसी पैमाने पर हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। हैदराबाद के हाईटेक्स में वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने समाख्या 2026 आलमी बिजनेस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि विकसित भारत के हदफ के हुसूल के लिए रियासती हुकूमत मरकज़ के साथ मुकम्मल ताउन करेगी। उन्होंने इंकिशाफ किया कि तेलंगाना को $3 ट्रिलियन की मईशत में तब्दील करने के मकसद से रियासत को 3 जोनों में तकसीम करके तरक्की दी जाएगी। वज़ीर-ए-आला ने वाज़े किया कि कौमी GDP में तेलंगाना के मौजूदा 5% हिस्से को मुस्तकबिल में बढ़ाकर 10% तक पहुंचाना हुकूमत का हदफ है।
1: సమైక్య చేంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ యువ పారిశ్రామికవేత్తలకు నేను ఆహ్వానం పలుకుతున్నా. ఈ 10,500 square kilometers లో ట్రంక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం క్రియేట్ చేస్తుంది. యువ పారిశ్రామికవేత్తలకు కావాల్సిన ఇన్సెంటివ్స్, పర్మిషన్స్, ల్యాండ్ అలాట్మెంట్స్ ని మీకు అందరికి ఇవ్వడానికి ఒక కాంప్రహెన్సివ్ పాలసీ తీసుకొచ్చిన
0: वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी और तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ ने वज़रा और अवामी नुमाइंदों को ग्रेजुएट MLC इंतखाबात में कामयाबी के लिए भरपूर मेहनत करने की हिदायत दी। दिल्ली में वज़ीर-ए-आला की रिहायशगाह पर मुनक़दा इजलास में इंतखाबी हिकमत अमली और वोटरों के इंदराज की अहमियत पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आला ने हिदायत दी कि दशहरे से कबल मुश्तरक अजला की सतह पर इजलास मुनक़द किए जाएँ। उन्होंने पार्टी रहनुमाओं से कहा कि हुकूमत की जानिब से फराहम करदा रोज़गार और फलाही स्कीमों के बारे में अवाम को आगाह किया जाए और मंडल और देही सतह पर इंतखाबी मुहिम को तेज किया जाए। तेलंगाना के नायब वज़ीर-ए-आला भट्टी विक्रम आर्का ने आज नारा कर्नूल जिले के अमराबाद मंडल के

अनानूर में 53 करोड़ 78 लाख रुपयों की लागत से तामीर किए जाने वाले बरकी सब स्टेशन का संग बुनियाद रखा। इस सब स्टेशन के क्याम का मकसद अमराबाद और अचमपेड इलाकों के कबायली और एजेंसी देहातों में मियारी और बिला तातुल बिजली की फराहमी को यकीनी बनाना है। इस मौके पर नायब वज़ीरे आला ने R&B सड़कों के तामीराती कामों और रायलगंडी में श्री लक्ष्मी चिन्ना केशवास्वामी मंदिर के गोपुरम की तामीर का भी संग बुनियाद रखा। उन्होंने मनानूर में बस शेल्टर का अफ्तिताह भी किया। अचमपेट के रुकन असम्बली वंशी कृष्णा की क्यादत में मुनक्कदा जलसे से खिताब करते हुए नायब वज़ीरे आला भट्टी विक्रमार्का ने ऐलान किया कि 19 नवंबर से इंद्रम्मा जीवन बीमा स्कीम शुरू की जा रही है। एल नीनो के असरात के बाद बिजली की तलब में नुमाया इजाफे के इम्कान के पेश नज़र नायब वज़ीरे आला भट्टी विक्रमार्का ने महकमे बरकी के अहदेदारों को हिदायत दी है कि बरकी की फराहमी में किसी भी किस्म के तातुल से बचने के लिए पेशगी इकदाम किए जाएँ। नायब वज़ीरे आला ने वजीर डी श्रीधर बाबू के हमरा प्रजा भवन में अहदेदारों के साथ अचानक वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की। इस दौरान उन्होंने ज़िरात घरेलू सार्फीन और सनअतों को मुसलसिल बिजली फराहम करने की हिदायत दी। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर कोल इंडिया से इजाफी कोयला खरीदा जाए और इस मकसद के लिए फंड्स की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। साबिक गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने मशवरा दिया है कि एल नीनो के असरात के पेश नज़र ज़िरात के साथ डेयरी भेड़ बकरियों की परवरिश और पोल्ट्री सनत को भी फ़रोग दिया जाए ताकि किसान इजाफी आमदनी हासिल कर सकें। हैदराबाद में मुनक्कदा सी कृष्णा राव मेमोरियल सोसाइटी के सालाना अवार्ड्स तकसीम करने की तकरीब में उन्होंने शिरकत की। इस मौके पर बेहतरीन खिदमत अंजाम देने वाले 22 अफराद को अवार्ड्स और तलाई तमगों से नवाजा गया। रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने वाज़ेह किया है कि हुक्मरान जमात और अपोजिशन के अरकान असम्बली के हलकों में किसी किस्म के इम्तियाज़ के बगैर तमाम अहल गरीब खानदानों को इंद्रम्मा मकानात फराहम किए जाएंगे। मेडचल मलकाजगिरी जिले के पोचारम में आज वजीर डी श्रीधर बाबू, रुकन पार्लियामेंट ईटला राजिंदर, रुकन असम्बली मल्ला रेड्डी और रुकन कानून साज कौंसल महेंद्र रेड्डी के हमरा उन्होंने इंद्रम्मा टावर्स की तामीर का संग बुनियाद रखा। वजीर ने बताया कि रियासत भर में पहले मरहले के तहत 4.5 लाख मकानात मंजूर किए गए हैं और हर मकान की तामीर के लिए 5 लाख रुपये की माली इमदाद फराहम की जा रही है। उन्होंने कहा कि अब तक 2,20,000 मकानात की तामीर मुकम्मल हो चुकी है। तेलंगाना के वजीर सीतक्का ने अहदेदारों को हिदायत दी कि रियासत में 7,448 किलोमीटर तवील हाम सड़कों की तामीर मियारी उसूलों के मुताबिक जंगी पैमाने पर मुकम्मल की जाए। हैदराबाद में इंजीनियरिंग अहदेदारों के तरबियती प्रोग्राम से खिताब करते हुए वजीर ने कहा कि खवातीन शक्ति और आंगनवाड़ी मराकज की इमारतों की तामीर 19 नवंबर तक मुकम्मल की जाए। उन्होंने ये भी हिदायत दी कि जिन मकामात पर तामीराती काम शुरू नहीं हुए हैं वहाँ इन कामों को मनसूख करने के इकदामात किए जाएं। रियासती वजीर सीतक्का ने अहदेदारों से ख्वाहिश जाहिर की कि बेहतर कारकर्दगी के जरिए महकमे का नाम रोशन करें। ज़िला CEOs और DC CEOs एसोसिएशन के नौ मुंतखब अहदेदारों ने आज प्रजा भवन में वजीर सीतक्का से खैर सगाली मुलाकात की। इस मौके पर नुमाइंदों ने वजीर को तहनियत पेश की और इजहार तशक्कुर किया। वजीर सीतक्का ने कहा कि एल नीनो के असरात के बाद पैदा होने वाले चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए अहदेदार पेशगी मनसूबाबंदी और बाहमी तालमेल के साथ काम करें। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने बताया कि मरकजी हुकूमत ने माजूर अफराद की पेंशन के लिए अहलियत के मियार में नरमी करने का फैसला किया है। अब तक 80% माजूरी रखने वाले अफराद को ही पेंशन दी जाती थी, लेकिन नए फैसले के तहत 40% माजूरी रखने वाले अफराद को भी पेंशन के अहल होंगे। उन्होंने कहा कि पेंशन की रकम में 25% इजाफा भी किया गया है। इस सिलसिले में मरकजी काबिना ने फैसला लिया है, जिसकी तफसीलात किशन रेड्डी ने एक प्रेस रिलीज में जारी की। मरकजी वजीर के मुताबिक पेंशन हासिल करने के लिए 18 साल की उम्र मुकम्मल होने तक इंतजार करने की शर्त भी खत्म कर दी गई है। अब पैदाइश से ही माजूरी के शिकार बच्चों को माली इमदाद फराहम की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस फैसले के नतीजे में माजूर पेंशन के मुस्तफिदीन की तादाद 8.33 लाख से बढ़कर 27.48 लाख हो जाएगी। रियासती वजीर टी नागेश्वर राव कल वनपर्ति जिले के दौरे पर होंगे। रियासती वजरा जुप्पली कृष्णा राव वाकटी श्रीहरी और नागकरनूल के रुकन पार्लियामेंट मल्लू रवि के साथ मिलकर मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखेंगे। रेवल्ली मंडल कोंकलापल्ली यदोला मंडल मरकज में गोदामों की तामीर और वनपर्ति PG कॉलेज में 15 करोड़ रुपयों की लागत से लड़के और लड़कियों के हॉस्टल की तामीर का संग बुनियाद और पेब्बर मंडल के अय्यावारी पल्ली में तेलंगाना रैतु विज्ञान केंद्र की इमारत की तामीर का संग बुनियाद रखेंगे।

0: ریاستی وزیر سیتکا نے سینئر خواتین ٹی ٹوئنٹی ٹرافی کے لیے حیدرآباد کی ٹیم میں منتخب ہونے والی کھلاڑی تاٹی کرشنا وینی کو مبارکباد پیش کی۔ پرجا بھون میں منعقدہ تقریب کے دوران وزیر نے کرشنا وینی کو شال پیش کر کے ان کی حوصلہ افزائی کی۔ سیتکا نے امید ظاہر کی کہ تلنگانہ کی نمائندگی کرتے ہوئے قومی سطح کے کرکٹ ٹورنامنٹ میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے والی کرشنا وینی خواتین کرکٹ کے میدان میں مزید کامیابیاں حاصل کریں گی اور بلند مقام تک پہنچیں گی۔ علاقائی موسمیاتی مرکز کے مطابق آج تلنگانہ میں موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے بتایا کہ کل اور پرسوں ریاست کے بعض مقامات پر ہلکی سے درمیانی بارش ہو سکتی ہے۔ تلنگانہ میں بیرون ملک اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے خواہش مند بی سی اور ای بی سی طلبہ کے لیے درخواستیں جمع کرنے کی آخری تاریخ میں 31 اکتوبر تک توسیع کر دی گئی ہے۔ محکمہ بہبود پسماندہ طبقات کی کمشنر بالا مایا دیوی نے بتایا کہ مہاتما جیوتیبا پھولے بی سی اور اوورسیز ودیا ندھی اسکیم کے تحت درخواستوں کی مدت 15 اکتوبر سے بڑھا کر 31 اکتوبر کر دی گئی ہے۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر، مرکزی وزیر کشن ریڈی نے بتایا کہ مرکزی حکومت نے معذور افراد کی پینشن کے لیے اہلیت کے معیار میں نرمی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پینشن کی رقم میں 25% اضافہ بھی کیا گیا ہے۔ نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرامارکا نے اعلان کیا کہ 19 نومبر سے اندرما جیون بیمہ اسکیم شروع کی جا رہی ہے۔ اور اب اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔
1: نمسکار، آکاش وانی سماچار کے ساتھ میں منیش شرما۔ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की घोषणा की गई है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रत्येक पात्र कर्मचारी को अधिकतम 17,951 रुपये का भुगतान किया जाएगा।
2: रेलवे के करीब 11,40,770 कर्मचारियों के लिए परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस 78 दिनों का बोनस आज कैबिनेट ने अप्रूव किया। ये दीपावली का उपहार है रेलवे के सभी कर्मठ कर्मचारियों के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं। करीब 2,009 करोड़ रुपए का टोटल बोनस है।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे में बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान चल रहा है। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने को भी स्वीकृति दी है।
2: दूसरा बड़ा फैसला आज लिया गया है, वंचितों को वरीयता, जो हमारे वीक सेक्शंस हैं सोसाइटी के, वल्नरेबल सेक्शंस हैं, उनके लिए सोशल सिक्योरिटी नेट का एक्सपेंशन, इसे 2031 तक बढ़ाया गया है और टोटल 53,428 करोड़ रुपीज का प्रावधान सोशल सिक्योरिटी नेट के एक्सपेंडेड फॉर्म में किया गया है।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि दिव्यांगजन पेंशन योजना के अंतर्गत अब 79 वर्ष तक के आयु वर्ग के लिए सहायता राशि 375 रुपये और 80 वर्ष तथा उससे अधिक आयु वर्ग के लिए 625 रुपये होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने IDBI बैंक के पुनर्गठन को भी मंजूरी दे दी है।
3: भारत जिस तेजी से ग्रो कर रहा है, इसमें ग्रोथ कैपिटल की बहुत रिक्वायरमेंट, ऐसी हमारे पास कई संस्थाएं चाहिए जो कि ग्रोथ कैपिटल को ला सके, MSMEs को सपोर्ट कर सके, इसीलिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक उसमें एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर सेलेक्ट किया गया है और स्ट्रेटेजिक पार्टनर की मदद से नया कैपिटल इन्फ्यूज किया जाएगा और भारत में फाइनेंशियल सर्विसेज में लार्जेस्ट FDI आने का माध्यम इस निर्णय से बना।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की सभ्यतागत यात्रा सदियों से सांस्कृतिक आदान प्रदान और ज्ञान के साझा प्रयासों से समृद्ध हुई है। भारत के वैश्विक सांस्कृतिक संबंधों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने एक संदेश में ये बात कही। उन्होंने कहा कि भिक्षुओं, विद्वानों, व्यापारियों और यात्रियों ने भूमि और समुद्री मार्गों के जरिए भारतीय विचारों को दुनिया भर में पहुंचाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत और आसियान देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए संयुक्त शोध, तकनीकी साझेदारी और समुद्री सुरक्षा पर मिलकर काम करने का प्रस्ताव रखा है। नई दिल्ली में आसियान भारत रक्षा थिंक टैंक फोरम में उन्होंने कहा कि आतंकवाद, साइबर अपराध, समुद्री चुनौतियों और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सभी देशों को साथ आना होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और कनाडा की विदेश मंत्री अनिता आनंद ने व्यापार और निवेश, शिक्षा, ऊर्जा, रक्षा और जन समुदाय आदान प्रदान क्षेत्रों में संबंधों

में हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों मंत्रियों ने आज नई दिल्ली में मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श किया है। महाराष्ट्र के 358 तालुकों में से 305 को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दीपावली से पहले किसानों को 5,000 रुपए की प्रारंभिक वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 252 अंक गिरकर 72,782 पर पहुंच गया। निफ्टी 99 अंक कम होकर 22,623 पर आया। आनंद कुमार विल कुमार ने पराग्वे में स्केटिंग खेलों में 1000 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में रजत पदक जीत लिया है। आनंद कुमार प्रतियोगिता में अब तक 2 पदक जीत चुके हैं। हैदराबाद में भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे से खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 से आगे है। मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में शुक्रवार तक ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: दिया जाता था, अब जन्म से ही दिव्यांग जन को पेंशन में कवर किया जाएगा। 27 लाख दिव्यांग जन लाभार्थी होंगे। टोटल लाभार्थियों की संख्या बढ़के करीब 3,20,00,000 हो जाएगी।
1: केंद्रीय मंत्रिमंडलस्य महती स्वीकृति IDBI बैंक संस्थायाः रणनीतिक पुनर्संरचना च निर्णीता। मंत्रिमंडलस्य उपवेशनानन्तरं नवदेहल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मन्त्रिणा अश्विनी वैष्णवेन समाख्यातं यत् देशस्य सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमानां तथा नूतन औद्योगिक उपक्रमाणां समभ्युदये अस्याः संस्थायाः महती भूमिका वर्तते। प्रधानमन्त्रिणा श्रीनरेन्द्रमोदिना अद्य प्रतिपादितं यत् देशस्य सभ्यतायात्रा शतकानां सांस्कृतिकविनिमयेन ज्ञानसहभाजनस्य च परम्परया निरूपिता वर्तते। विश्वे भारतस्य सांस्कृतिकसम्पर्काणामुपरि आयोजितायाः अन्ताराष्ट्रियसङ्गोष्ठ्याः

0: प्रगति की समीक्षा की। भारत ने सऊदी अरब में नागरिक अवसंरचनाओं पर हमलों को अस्वीकार्य बताते हुए इन्हें तुरंत बंद करने को कहा। महाराष्ट्र ने 305 तालुकों को सूखाग्रस्त घोषित किया। दीपावली से पहले किसानों को 5,000 रुपए की प्रारंभिक सहायता दी जाएगी। पैराग्वे में आनंद कुमार वेल कुमार ने विश्व स्केटिंग खेलों में 1000 मीटर स्प्रिंट में रजत पदक जीत लिया है और हैदराबाद में भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये जानकारी दी।
1: दूसरा बड़ा फैसला आज लिया गया है, वंचितों को वरीयता, जो हमारे वीक सेक्शंस हैं सोसाइटी के, वल्नरेबल सेक्शंस हैं, उनके लिए सोशल सिक्योरिटी नेट का एक्सपेंशन, इसे 2031 तक बढ़ाया गया है और टोटल 53,428 करोड़ रुपीस का प्रावधान सोशल सिक्योरिटी नेट के एक्सपेंडेड फॉर्म में किया गया है।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि दिव्यांग जन पेंशन योजना के अंतर्गत अब 79 वर्ष तक की आयु वर्ग के लिए सहायता राशि 375 रुपए और 80 वर्ष तथा उससे अधिक आयु वर्ग के लिए 625 रुपए होगी।
1: दिव्यांगजनों के लिए जो पहले 80% थ्रेशोल्ड था डिसेबिलिटी पेंशन में एलिजिबिलिटी के लिए, उसको आधा करके 40% पर भी अब दिव्यांग पेंशन दिया जाएगा। पहले दिव्यांग पेंशन 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को ही दिया जाता था, अब जन्म से ही दिव्यांग जन को पेंशन में कवर किया जाएगा। 27 लाख दिव्यांगजन लाभार्थी होंगे। टोटल लाभार्थियों की संख्या बढ़ के करीब 3,20,00,000 हो जाएगी।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने IDBI बैंक के पुनर्गठन को भी मंजूरी दे दी है।
2: भारत जिस तेजी से ग्रो कर रहा है, इसमें ग्रोथ कैपिटल की बहुत रिक्वायरमेंट, ऐसी हमारे पास कई संस्थाएं चाहिए जो कि ग्रोथ कैपिटल को ला सके, एमएसएमई इसको सपोर्ट कर सके, इसीलिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक उसमें एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर सेलेक्ट किया गया है और स्ट्रेटेजिक पार्टनर की मदद से नया कैपिटल इन्फ्यूज किया जाएगा और भारत में फाइनेंशियल सर्विसेज में लार्जेस्ट FDI आने का माध्यम इस निर्णय से बना।
0: मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की भी घोषणा की है। श्री वैष्णव ने बताया कि प्रत्येक पात्र कर्मचारी को अधिकतम 17,951 रुपए का भुगतान किया जाएगा।
1: रेलवे के करीब 11,40,770 कर्मचारियों के लिए परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस, 78 दिनों का बोनस आज कैबिनेट ने अप्रूव किया। ये दीपावली का उपहार है रेलवे के सभी कर्मठ कर्मचारियों के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं। करीब 2,009 करोड़ रुपए का टोटल बोनस है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे में बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान चल रहा है।
1: रेलवे में मैसिव रिक्रूटमेंट चल रहा है, भर्तियां करीब 1,65,000 भर्तियां निकली हुई है जिसपे एग्जाम लगातार चल रहा है। अब तक करीब करीब 37,000 रोजगार पक्की नौकरी दी जा चुकी है रेलवे में इसी पिछले कुछ समय में ही। टोटल अगर 2014 से अब तक की देखें तो करीब 5.5 लाख भर्तियां रेलवे में की गई है।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने IDBI बैंक के पुनर्गठन को आर्थिक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार कम हिस्सेदारी बनाए रखते हुए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के माध्यम से विकास के अगले चरण को गति दे रही है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इससे न केवल बैंकिंग व्यवस्था मजबूत होगी बल्कि बैंकिंग सेवाएं वैश्विक मानकों से बढ़कर होंगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत कनाडा के साथ एक ऐसी रचनात्मक और भविष्योन्मुखी रणनीतिक साझेदारी बनाने के लिए

0: प्रतिबद्ध है जिससे दोनों देशों के लोगों को फायदा हो। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा की। उन्होंने व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के आवागमन में भारत कनाडा संबंधों को और मजबूत करने पर बातचीत की। श्री मोदी ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत को जल्द पूरा करने पर बल दिया। उन्होंने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रम पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। इससे पहले विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और कनाडा की विदेश मंत्री ने व्यापार और निवेश, शिक्षा, ऊर्जा, रक्षा और जन समुदाय आदान प्रदान क्षेत्रों में संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। कनाडा की विदेश मंत्री ने कहा कि व्यापार वार्ताओं को आगे बढ़ाने से लेकर ऊर्जा, नवाचार और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने तक भारत और कनाडा की प्रगति से वे उत्साहित हैं। सरकार ने भारत मॉरिशस के दोहरे कराधान निवारण समझौते में संशोधन अधिसूचित किए हैं। इसमें कर चोरी और कर से बचने के लिए संधि प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक प्रमुख उद्देश्य परीक्षण शामिल किया गया है। संशोधित समझौते के अंतर्गत यदि किसी लेन देन या व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य कर संबंधी लाभों को प्राप्त करना पाया जाता है तो ऐसे लाभों को अस्वीकार किया जा सकता है। भारत ने आज सऊदी अरब के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए पश्चिम एशिया के देशों में हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत नागरिक बुनियादी ढांचे पर सभी हमलों की निंदा करता है। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले पूरी तरह स्वीकार्य हैं और इन्हें फौरन बंद होना चाहिए। श्री जायसवाल ने बताया कि सऊदी अरब में भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के साथ नियमित संपर्क में है और परामर्श भी जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि रियाद हवाई अड्डे पर हमले के बाद उड़ानों में व्यवधान आया है।
1: भारत और सऊदी अरब के बीच में काफी आवाजाही होती है, लेकिन हमारे जो एम्बेसी हैं वो एयरलाइन से, समुदाय से और जिनको जिस प्रकार का जो भी उनको मदद चाहिए वो करा रही है, और हमारा मानना है कि सिचुएशन अगर बेहतर हो जाए तो लोग वापस आ सकेंगे घर। कुछ जहाज चल रही है, हमारे जो भारतीय जहाज थी उन पे डिस्ट्रप्शन आया है, लेकिन सऊदी अरेबिया की तरफ से जो उनके हवाई जहाज की कंपनियां हैं वो फ्लाइट्स चल रही हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की सभ्यतागत यात्रा सदियों से सांस्कृतिक आदान प्रदान और ज्ञान के साझा प्रयासों से समृद्ध हुई है। भारत के वैश्विक सांस्कृतिक संबंधों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने एक संदेश में ये बात कही। उन्होंने कहा कि भिक्षुओं, विद्वानों, व्यापारियों और यात्रियों ने भूमि और समुद्री मार्गों के जरिए भारतीय विचारों को दुनिया भर में पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 साल पूरे कर लिए हैं। उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र जनसेवा से देश सेवा रहा है। सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण के साथ सरकार 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। विशेष श्रृंखला में आज हम जानेंगे कि प्रधानमंत्री संग्रहालय ने किस तरह इस दृष्टिकोण को साकार किया है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया था, जिसमें देश के सभी प्रधानमंत्रियों के काम और देश के विकास में उनके योगदान को दर्शाया गया है। यह संग्रहालय दिखाता है कि कैसे भारतीय लोकतंत्र ने समाज के हर वर्ग के नेताओं को राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के अवसर दिए हैं। दो भवनों में फैला यह आधुनिक डिजिटल संग्रहालय भारत के राजनीतिक इतिहास, लोकतांत्रिक परंपराओं और विकास यात्रा की झलक प्रस्तुत करता है। संग्रहालय में वीरांगनाओं की महागाथा नाम से एक लाइट एंड साउंड शो भी आयोजित किया जाता है, जिसमें उन वीर महिलाओं की प्रेरणादायक कहानियां दिखाई जाती हैं जिन्होंने देश के सम्मान की रक्षा के लिए संघर्ष किया। इस संग्रहालय का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि यह सभी सरकारों की साझा विरासत और देश के विकास में उनके योगदान का प्रतीक है।
3: देश आज जिस ऊंचाई पर है वहां तक उसे पहुंचाने में स्वतंत्र भारत के बाद बनी प्रत्येक सरकार का योगदान है। मैंने लाल किले से भी ये बात कई बार दोहराई है। आज ये संग्रहालय भी प्रत्येक सरकार की साझा विरासत का जीवंत प्रतिबिंब बन गया है।
2: श्रीलंका के न्यायमूर्ति एस थुरैराजा ने प्रधानमंत्री संग्रहालय के दौरे के दौरान भारत के लोकतंत्र और देश के विकास में प्रधानमंत्रियों की भूमिका पर अपने विचार साझा किए।
4: हम भारत के मुख्य न्यायाधीश के निमंत्रण पर दिल्ली आए। मैं सोच रहा था कि जाऊं

0: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है बृहत्तर भारत, विश्व में सांस्कृतिक जुड़ाव को दर्शाते एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत अनिल वाधवा और वरिष्ठ पत्रकार रवि पराशर। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
1: श्रोताओं नमस्कार। संस्कृति मंत्रालय आज से नई दिल्ली में बृहत्तर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है और इस सम्मेलन का विषय है भारत के वैश्विक सांस्कृतिक संबंध। और इस सम्मेलन में कई देशों के प्रतिनिधि, राजदूत, विद्वान भारत के ऐतिहासिक और समकालीन सांस्कृतिक संबंधों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस कार्यक्रम में अपना संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भारत की सभ्यतागत यात्रा सदियों पुरानी है और जो सांस्कृतिक आदान प्रदान तथा ज्ञान के साझा प्रयासों से जुड़ी हुई है। हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं पूर्व राजदूत अनिल वाधवा और वरिष्ठ पत्रकार रवि पराशर। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
3: धन्यवाद।
1: संस्कृति मंत्रालय में सचिव विवेक अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश पढ़ते हुए कहा,
4: So I'll read the message of Honorable Prime Minister. I am pleased to learn that the Ministry of Culture through the National Center for the Arts is organizing an international conference in New Delhi on the theme Bharat's Culture

0: connections across the globe. I warmly welcome the scholars, researchers, diplomats, and other distinguished participants from India and abroad who are participating in this important conference. For centuries, India's civilizational journey has been a story of cultural exchange. Centers of learning, such as Nalanda, strengthened the exchange of knowledge between India and other parts of Asia. Monks, scholars, traders and travelers carried India's ideas to different parts of the world through land and maritime routes. Sites such as Angkor and Sambor Prey Kuk in the Southeast Asia bear witness to this cultural dialogue, where Indian traditions interacted with local cultures and took distinctive forms. The cultural dialogue continues to evolve even today. Indian philosophy, music, dance, literature, cinema, and cuisine continue to connect India with societies across the world. Indian festivals and traditions are also celebrated with enthusiasm in many countries.
1: Sachiv ne Brihattar Bharat ke bare mein bataya.
0: It's indeed a privilege for Ministry of Culture that Honorable Prime Minister has given us this mandate to take up the mission of bringing India's ancient connections with the rest of the world, to bring them out, to put in scholarly effort to establish these connections along with scholars of the countries in which we had our ancient connections, and then bring these papers and bring these connections with international recognition.
1: अनिल जी, सबसे पहले मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा. बृहत्तर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, एक आम श्रोता की दृष्टिकोण से अगर इसे समझने का प्रयास करें तो ये क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है और इसका हमारी संस्कृति के लिए महत्व क्या है, और साथ ही हम जो अपने लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं एक विकसित देश के लिए, उस दिशा में इसका क्या महत्व है?
2: सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि बृहत्तर भारत का अर्थ क्या है. इसका अर्थ भारत की पुरानी राजनीतिक सीमाओं का विस्तार नहीं है. इसका आशय उन व्यापक सांस्कृतिक संबंधों से है जिसके माध्यम से भारतीय विचार, भाषाएं, साहित्य, धार्मिक परंपराएं, कला और ज्ञान भारत के बाहर अनेक देशों तक पहुंचे, और इन संबंधों को व्यापारियों, समुद्री यात्रियों, विद्वानों, बौद्ध भिक्षुकों, कलाकारों और सामान्य लोगों ने विकसित किया है. तो यह प्रक्रिया कई शताब्दियों तक चलती रही और इसके प्रभाव आज भी अनेक देशों की संस्कृति में दिखाई देते हैं. तो भारत की सभ्यता की एक बड़ी विशेषता यह रही है कि उसने विभिन्न विचारों और परंपराओं के साथ समाज किया है, और यहाँ अनेक धर्म, भाषाएं और दर्शन विकसित हुए हैं. आप देखिए, वैदिक साहित्य है, उपनिषद है, बौद्ध और जैन दर्शन है, योग, आयुर्वेद, गणित और खगोल विज्ञान ने भारत के बौद्धिक जीवन को समृद्ध बनाया है.
1: जी,
2: तो समय के साथ इसमें से अनेक विचार भारत की सीमाओं से बाहर पहुंचे. दूसरे देशों ने उन्हें अपनी आवश्यकताओं और सांस्कृतिक परंपराओं के अनुसार अपना लिया, और इस प्रकार सांस्कृतिक संबंध केवल एक देश से दूसरे देश तक विचार पहुंचाने का माध्यम नहीं थे,
1: जी
2: बल्कि आपसी सीधे और एक दूसरे को समृद्ध करने की प्रक्रिया भी थी. तो ये जो सम्मेलन हो रहा है ये इसी के विषय में.
1: पराशर जी, अगर आपसे मैं पूछूं तो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार भारत की प्राचीन विरासत और सभ्यतागत संबंधों को वैश्विक मंचों पर रेखांकित करते रहे हैं, और भारत का जो सॉफ्ट पावर है उसका भी उन्होंने हमेशा जिक्र किया है, चाहे देश के अंदर हो या देश के बाहर. जब भी कभी वो लोगों को संबोधित करते हैं तो ये बात जरूर रखते हैं. तो दूसरे देशों के साथ कूटनीतिक संबंधों को बढ़ाने की बात हो, संबंधों को और आगे ऊंचाई पर ले जाने की बात हो, तो ऐसी स्थिति में बृहत्तर भारत का महत्व हमारे लिए क्या है?
3: जी निखिल जी, बृहत्तर भारत का जो एक महत्व वाधवा जी ने रेखांकित किया कि ये केवल भौगोलिक सीमाओं के विस्तार की कोई बात नहीं है
1: जी.
3: और जहां तक प्रधानमंत्री की आपने बात की, तो आज हम देखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब भी विदेश यात्राओं पर जाते हैं तो वहां भारतीय डायस्पोरा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता. मोदी के साथ विदेश में रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों की जीवंत और खुशनुमा तस्वीरें हर बार हम लोग टेलीविजन पर और सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर देखते हैं. विदेश में भारतीयों ने खास पहचान कायम की है, और हम सब जानते हैं कि अब तो बहुत से देशों की राजनीति की मुख्य धारा में भी भारतीय मूल के लोगों ने अपनी पक्की और पुख्ता जगह बना ली है. जैसा कि आपने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश इस सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर पढ़ा गया, और उन्होंने मुख्य रूप से, जो मुझे लगता है, कि तीन बातों पर विशेष ध्यान दिया
1: जी.
3: कि आज के दौर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की सांस्कृतिक विरासत को बहुत बड़ी पहचान और सम्मान मिल रहा है, इसमें किसी को भी शक संदेह नहीं होना चाहिए. दूसरी बात जो प्रमुख रूप से उन्होंने कही कि विदेशों में ले जाई गई भारत की प्राचीन सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कलाकृतियों और पुरावशेषों को वापस

0: देश में लाने की कोशिशों में एक नई रफ्तार आई, यानी विदेशों में किसी भी तरह से जो हमारी धरोहरें थीं वो चली गई थीं, कलाकृतियां थीं, पांडुलिपियां थीं, तो अब दूसरे देश हमें ससम्मान वो हमारी पुरानी चीजें, पुरानी धाती, पुराने पुरानी ज्ञान परंपरा के स्रोत वापस लौटा रहे हैं। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री ने इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन पर कही कि भारत के संगीत, नृत्य और समृद्ध दर्शन ने हमेशा दुनिया को जोड़ने वाले पुल के तौर पर काम किया है।
1: जी
0: और यही बात है, यही मूल संदेश है जो आपके प्रश्न में अंतर्निहित है। भारत का पूरी दुनिया के साथ जो कूटनयिक रिश्ता है वो कितना प्रगाढ़ है, कितना महत्वपूर्ण है, ये बात प्रधानमंत्री जी ने रेखांकित की। और हम जानते हैं कि आज बहुध्रुवीय दुनिया है, ऐसे में भारत भी एक प्रमुख ध्रुव के तौर पर उभर रहा है। ये बहुत सी घटनाओं से हम साबित कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं और देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं।
1: जी वाधवा जी, भारतीय विचारों और ज्ञान का जो प्रचार प्रसार हुआ प्राचीन काल में थल और समुद्री मार्गों से हुआ था, और आज की अगर हम बात करते हैं तो भारत अपने सभी सांस्कृतिक संबंधों की बात हो, व्यापारिक संबंधों की बात हो, या ऐसे कूटनीतिक संबंध हो जिन्हें आगे बढ़ाए जा सकते हैं, जिन्हें बढ़ाया जाना भी आवश्यक हो, उसके लिए भी पर्यटन, व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में बढ़ाने के लिए लगातार समुद्री मार्गों को विस्तार देना, जिसमें कई सारी योजनाएं शुरू की गई हैं। हिंद प्रशांत की हम बात करते हैं, खुले हिंद प्रशांत की बात करते हैं, महासागर पहल की बात करते हैं, ये जो सारी चीजें हैं, अगर इनका एकीकरण करके देखें तो इन विचारों को कहाँ तक पहुंचता हुआ आप देखते हैं?
2: देखिए, जैसे कि आपने कहा कि इतिहास में कई उदाहरण हैं, जैसे भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के संबंध इस इतिहास का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। दक्षिण पूर्व एशिया की संस्कृति पर उनका बहुत गहरा प्रभाव है, और बौद्ध धर्म ने भी भारत को एशिया के अनेक देशों से जोड़ा है। तो चीन, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और मध्य एशिया सब जगह बौद्ध विचार पहुंच चुके थे प्राचीन काल में। और फिर उसके बाद आज जैसे प्रधानमंत्री ने नालंदा और विक्रमशिला का जिक्र किया, इन प्राचीन शिक्षा केंद्रों की प्रतिष्ठा भी भारत के बाहर पहुंच चुकी थी। तो भारत की जो सांस्कृतिक यात्रा समुद्री मार्गों तक ही सीमित नहीं थी, क्योंकि मध्य एशिया को अगर हम देखें तो उसके साथ भी भारत के पुराने संबंध रहे हैं, और एक रेशम मार्ग के नाम से प्रसिद्ध एक व्यापारिक नेटवर्क, उसके माध्यम से व्यापारी, यात्री, विद्वान सभी विभिन्न क्षेत्रों में यात्रा करा करते थे।
1: जी
2: हम देखें तो इसका सांस्कृतिक मेल का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। आज जो भारत की विदेश नीति है उसमें भी बृहत्तर भारत की अवधारणा आज भारत की विदेश नीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम एक्ट ईस्ट नीति को देखें तो उसके अंतर्गत दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ संबंधों को मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि इन देशों के साथ हमारे पुराने सांस्कृतिक संबंध आज व्यापार, पर्यटन, शिक्षा, प्रौद्योगिकी और लोगों के बीच संपर्क बनाने में सहायक हो सकते हैं। आज के अंतर्राष्ट्रीय संबंध समानता, आपसी सम्मान और साझा हितों पर आधारित होने चाहिए, ऐसा
1: जी
2: भारत का विश्वास है। और संस्कृत की निकटता विश्वास बनाने में सहायता करती है, लेकिन उसे ठोस सहयोग और व्यावहारिक कार्यक्रमों में बदलने की भी आवश्यकता है। तो इसके लिए भारत ने दूसरे देशों के विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग बढ़ाया है, क्योंकि संयुक्त शोध हम देख रहे हैं, काफी सारी छात्रवृत्तियां आरित की गई हैं, सांस्कृतिक प्रदर्शनियां और ऐतिहासिक दस्तावेजों का संरक्षण
1: जी
2: इस दिशा में उपयोगी कदम हो रहा है। और हम देखते हैं कि नई पीढ़ी को इस विरासत से जोड़ना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो युवाओं को शोध, छात्रवृत्तियां और सांस्कृतिक आदान प्रदान के अवसर मिलने चाहिए, और डिजिटल अभिलेखागार, ऑनलाइन पुस्तकालय और ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी इस दिशा में उपयोगी साधन बन सकते हैं। तो यही बृहत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण संदेश है कि संस्कृति लोगों को जोड़ सकती है, और भारतीय परंपरा में जो वैष्णव कुटुंबों का विचार है इसी व्यापक दृष्टि को व्यक्त करता है।
1: वाधवा जी, अभी आपने एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात की है, तो बहुत ही कम शब्दों में अगर इसे समझना चाहें तो इसका बृहत्तर भारत की ऐतिहासिक अवधारणा के साथ किस तरह का संबंध नजर आता है, और ये जो हमारे सांस्कृतिक संबंध रहे हैं, अतीत के संपर्क रहे हैं, आज के रणनीतिक सहयोग को कितना आगे ले जा रहे हैं, खासतौर पे आधुनिक विदेश नीति को धरातल पर उतारने के लिए आर्थिक और सुरक्षा हितों की जब हम बात करते हैं उनको आगे ले जाने की बात करते हैं?
2: जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि रामायण और महाभारत कहानियां दक्षिण पूर्व एशिया की संस्कृति पर इनका बहुत गहरा प्रभाव है, और इंडोनेशिया में रामायण नृत्य, नाटक और छाया पुतली कला के माध्यम से आज भी प्रस्तुत की जाती है। थाईलैंड में रामायण का स्थानीय रूप राम कियन के नाम से प्रसिद्ध है। कैम्बोडिया का अंकोर वाट मंदिर भी भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंधों का एक उल्लेखनीय

0: उदाहरण। तो इन देशों में भारतीय परंपराओं को अपनी स्थानीय मान्यताओं और जीवन पद्धतियों के साथ मिलाकर नए रूप दिए गए हैं। इसलिए इन परंपराओं को केवल भारतीय संस्कृति का विस्तार मानना पर्याप्त नहीं है, वे उन देशों की एक सांस्कृतिक पहचान का एक हिस्सा है। तो ये हमें सिखाता है कि संस्कृतियां एक दूसरे से सीखकर, परिवर्तन स्वीकार करके और नए विचार अपनाकर समृद्ध होती हैं। और भारत ने जब एक्ट ईस्ट पॉलिसी शुरू करी थी 2014 में, उस समय में विदेश मंत्रालय में सचिव था। मुझे याद है कि बौद्ध धर्म के ऊपर हमने काफी काम किया और कई देशों को बौद्ध धर्म के जो विचारधारा है उसके चलते इन सभी देशों को भारत के साथ फिर से जोड़ने का काफी प्रयास किया था, क्योंकि भारत से बौद्ध विचार कई देशों में पहुंचे थे और बौद्ध भिक्षुओं ने लंबी यात्राएं की थी और विभिन्न देशों में शिक्षा और धार्मिक अध्ययन की केंद्र स्थापित करने में योगदान दिया था। अब हम चीन को ही देखें तो चीन से फाहियान और ह्वेनसांग जैसे यात्री
1: जी
0: भारत आए, उन्होंने यहाँ के धार्मिक जीवन, शिक्षा केंद्रों और सामाजिक व्यवस्था का भी अध्ययन किया। और दूसरी ओर भारतीय विद्वान बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन और अनुवाद के लिए चीन और दूसरे देशों में गए। तो हमने नालंदा का फिर से विकास किया और भारत सरकार आज भी नालंदा को काफी मान्यता दे रही है। वो इसलिए है क्योंकि भारत प्राचीन काल में जो अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान और शिक्षा का संसार का महत्वपूर्ण हिस्सा था, उसका एक रिवाइवल जिसको हम बोलते हैं, उसकी एक कोशिश आजकल हो रही है। और आगे मैंने गांधार की कला का भी जिक्र किया था,
1: जी
0: तो इसमें हमें भारतीय बौद्ध विषयों के साथ यूनानी और रोमन कला के प्रभाव दिखाई देते हैं। तो इन सभी का प्रसार एक्ट ईस्ट पॉलिसी से जुड़ा हुआ है,
1: जी
0: क्योंकि जब हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात करते हैं विदेश नीति में, तो ये जो पुराने संबंध हैं भारत के इन सभी देशों के साथ में, इनका जो जिसको हम रिवाइवल बोलते हैं अंग्रेजी में, अगर वो हो जाए तो विदेश नीति में इसकी काफी सहायता मिल सकती है।
1: जी पराशर जी, भारत और आसियान देशों की अगर हम बात करें तो साझा धार्मिक, साहित्यिक, भाषाई और कलात्मक विरासत की अक्सर चर्चा होती है। तो आपके विचारों को अगर मैं समझना चाहूँ तो इन संबंधों की आज कितनी वास्तविक भूमिका आपको लगती है? क्या ये कोई केवल कूटनीतिक आयोजनों तक ही सीमित है, या फिर अभिव्यक्तियों तक सीमित है, या फिर व्यापार, शिक्षा, पर्यटन और क्षेत्रीय सहयोग में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं?
2: भारत की सभ्यता, संस्कृति, संस्कार बहुत से देशों तक बहुत पुराने समय से ही पहुंचने शुरू हो गए थे। भारत के लोग जिन देशों में पहुंचे, कुशल अकुशल मजदूर और कारीगर बनकर वे जिन देशों में पहुंचे और वहीं बस गए, वहां वहां भारतीय संस्कारों ने जड़ें जमाई। बहुत से विदेशी विद्वानों को भारतीय ज्ञान परंपरा इतनी पसंद आई कि उन्होंने अपनी अपनी भाषाओं में भारतीय ग्रंथों का अनुवाद किया और भारतीय विचार का प्रचार किया, उसे अपनाया भी और उसका प्रसार भी किया। भारतीय लोग व्यापार के लिए दूसरे देशों में जाते थे, बड़ी समृद्ध परंपरा थी, और
1: जी
2: विदेशी जो लोग थे वो व्यापार के लिए भारत आते थे। आज व्यापार का स्वरूप बहुत ज्यादा वैश्विक है। शिक्षा के लिए देश विदेश के द्वार उदारता से खुले हैं। हुनरमंद भारतीयों ने दुनिया के तमाम देशों में अपनी प्रतिभा के बूते बड़ी और सम्मानजनक जगह बनाई है। ऐसे में 72 भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का बड़ा इंपॉर्टेंस है।
1: जी
2: जैसा आपने बताया कि विश्व भर में भारत के सांस्कृतिक संबंध 72 भारत के जरिए जानने समझने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 14 से 16 अक्टूबर तक नई दिल्ली के विज्ञान भवन में किया जा रहा है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि 72 भारत योजना और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मूल उद्देश्य, मूल मकसद केवल इतिहास को याद करना नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया एक कुटुंब है, जैसा कि अनिल जी ने कहा, वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ आज के आधुनिक दौर में भी भारत के वैश्विक सांस्कृतिक और कूटनैतिक संबंधों को नए आयाम देना है। खास बात यह है कि इस सम्मेलन में चीन, जापान, मंगोलिया, नेपाल और ईरान समेत दुनिया भर के 50 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि यानी नुमाइंदे, राजदूत और विद्वान लोग भाग ले रहे हैं। ऐसे में केवल एक वैश्विक इसका उद्देश्य नहीं हो सकता है। मैं बहुत सारे एक दूसरे से संबंधित देशों के जब बनते हैं तो केवल भाषाई आधार पर नहीं, साहित्यिक आधार पर नहीं, विकास के और दूसरे जो बुनियादी माध्यम है उनके द्वारा नहीं, एक बहुआयामी अप्रोच के साथ काम करना पड़ता है। और भारत सरकार ये काम कर रही है और काफी सफलतापूर्वक कर रही है। ये हम कह सकते हैं।
1: जी वाधवा जी, भारत चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच प्राचीन काल से व्यापारिक तथा सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। आपने सिल्क रूट का भी जिक्र किया था। आज के समय में जब लगातार हम ये देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है और एशिया में भी इसका असर देखा जा रहा है, तो साझा इतिहास जो हमारा रहा है 72 भारत में जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसे किस नजरिए से आज देख सकते हैं? क्या ये सभी देशों के बीच में सहयोग का एक बड़ा आधार बनेगा या इतिहास को वर्तमान

0: मान की रणनीतिक प्रतिस्पर्धा से हम अलग रखें या दोनों को मिला करके आगे बढ़ सकते हैं?
1: बेहतर भारत
0: जी
1: का एक महत्वपूर्ण संदेश यह भी है कि संस्कृति लोगों को जोड़ सकती है, और आज दुनिया अनेक संघर्षों, राजनीतिक तनावों और आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रही है। ऐसे समय में विभिन्न देशों के बीच सांस्कृतिक संवाद का महत्व और बढ़ जाता है। अब किसी दूसरे समाज की भाषा, कला, साहित्य और परंपराओं को समझने से उसके लोगों के प्रति सम्मान भी बढ़ता है। इससे मतभेदों के बावजूद सहयोग के रास्ते खुले रखने में मदद मिलती है। तो नई पीढ़ी को हमें इस विरासत से जोड़ना है, ये काफी महत्वपूर्ण है, और विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में भारत के अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक संबंधों पर अधिक ध्यान देना चाहिए। युवाओं को शोध और छात्रवृत्तियों और सांस्कृतिक आदान प्रदान के अवसर मिलने चाहिए। इसी तरह से कई बार किसी देश में सुरक्षित दस्तावेज दूसरे देश के इतिहास को समझने में भी सहायता करते हैं, तो ऐसे में संयुक्त शोध और जानकारी का आदान प्रदान विशेष महत्व रखता है। कभी विरासत का संरक्षण भी साझा जिम्मेदारी है। सरकारों के साथ साथ स्थानीय समुदायों, संग्रहालयों और शैक्षणिक संस्थानों में उनकी भागीदारी भी आवश्यक है। तो आज के अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जिसमें आपसी सम्मान और साझा हितों पर बहुत जोर है, आज के कॉन्टेक्स्ट में, और हम जो ये जो सम्मेलन भारत में हो रहा है इसके कॉन्टेक्स्ट में काफी महत्वपूर्णता रखते हैं। तो मुझे लगता है कि नई दिल्ली में ये जो आयोजित ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, इसी दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है। तो इससे आशा की जा सकती है कि भारत और विश्व के बीच सांस्कृतिक संबंधों पर नए शोध होंगे, और विश्वविद्यालयों और सांस्कृतिक संस्थानों के बीच सहयोग बढ़ेगा, और हमारी साझा विरासत को सुरक्षित रखने के नए रास्ते भी खुलेंगे।
0: जी पराशर जी, बृहत्तर भारत की अवधारणा सांस्कृतिक गौरव के संदर्भ में भी हमारे सामने आती है और इसे राजनीतिक विस्तारवाद से भी जोड़ा जा सकता है। तो आपका विचार क्या है कि इन दोनों के बीच में कोई अंतर है या दोनों अब एक ही सिक्के के दो पहलू होकर के एक साथ चलेंगे ताकि इतिहास को ना तो संकीर्ण दृष्टि से देखा जाए और ना ही उसका अधिकतम राजनीतिक इस्तेमाल हो?
2: निखिल जी, बृहत्तर भारत योजना, ये योजना पहली बार भारत की किसी सरकार ने शुरू की है, और इसके महत्व को इस तरह से हम समझ सकते हैं। ये योजना 2026 से 2031 के बीच तक चलेगी, और इसके बाद इसका कोई दूसरा चरण पर विचार किया जा सकता है। बृहत्तर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की जहां तक बात है, तो ये भारत सरकार की बृहत्तर भारत योजना का ही हिस्सा है। संस्कृति मंत्रालय के ग्लोबल एंगेजमेंट टीम के तहत चलाई जा रही इस योजना के जो लक्ष्य हैं, उन्हें पहले समझ लेते हैं।
0: जी
2: ये है कि दुनिया भर में बिखरी हुई भारत की साझा सांस्कृतिक और सभ्यतागत विरासत का दस्तावेजीकरण, संरक्षण और डिजिटलीकरण करना। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम के लिए दूसरे देशों के साथ मिलकर, ये इंपॉर्टेंट है, दूसरे देशों के साथ मिलकर बहुराष्ट्रीय नामांकन दाखिल करना भी इसका लक्ष्य है, और एक समर्पित डिजिटल बृहत्तर भारत पोर्टल तैयार करना, ताकि वैश्विक स्तर पर इस साझा विरासत को शोधकर्ताओं और आम जनता तक आसानी से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध कराया जा सके, ये भी इसका एक प्रमुख लक्ष्य है। और ये सम्मेलन नई दिल्ली में क्यों किया जा रहा है, इसका क्या ऐतिहासिक महत्व है, ये भी जान लें।
0: जी
2: ये सम्मेलन बृहत्तर भारत परिषद यानी ग्रेटर इंडिया सोसाइटी, काउंसिल नहीं, परिषद के लिए काउंसिल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया था, ग्रेटर इंडिया सोसाइटी की स्थापना के 100 साल पूरे होने पर किया जा रहा है, यानी ये शताब्दी वर्ष है बृहत्तर भारत परिषद। परिषद की स्थापना 14 अक्टूबर 1926 को तत्कालीन कलकत्ता में भारतीय विद्वानों ने की थी। इसके आध्यात्मिक मार्गदर्शक गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर थे। इस संस्था का मूल उद्देश्य भारत के बाहर, खासकर दक्षिण पूर्वी और मध्य एशिया में, भारतीय संस्कृति, कला, भाषा, धर्म और आध्यात्मिक विचारों के प्रसार और उसके ऐतिहासिक प्रभावों का अकादमिक अध्ययन करना। यानी हम देख रहे हैं कि 100 साल पहले ही हमारे देश के जो दूरदर्शी विद्वान थे, उन्होंने भांप लिया था कि भारतीय संस्कृति की जड़ें पूरी दुनिया में बहुत गहराई तक जुड़ी हुई रहें, इसके लिए बाकायदा एक संस्थागत प्रयास किया जाना चाहिए, और वो प्रयास 100 साल पूरे होने पर किया गया। इसकी जो थीम है सम्मेलन की, 3 दिनों के दौरान विभिन्न देशों के भारत के साथ सभ्यतागत जुड़ाव, पुराने व्यापार मार्ग जैसे सिल्क रूट का जिक्र हुआ, उल्लेख हुआ,
0: जी
2: दर्शन, कला, वस्त्र यानी टेक्सटाइल और खान पान के आदान प्रदान जैसे 10 जीवंत विषयों पर गहन चर्चा इस सम्मेलन में होगी। एक एक करके अगर देखें हम, तो शुरुआती जुड़ाव और सभ्यतागत संपर्क यानी प्राचीन पुरातत्व व्यापारिक मार्ग और शुरुआती संपर्क के साधन कौन कौन से थे उनका अध्ययन करना, धार्मिक परंपराएं और ज्ञान प्रणालियां जैसे बौद्ध धर्म का उल्लेख हुआ, हिंदू और सूफी विचारों का वैश्विक प्रसार।

0: इसका उल्लेख हुआ, इससे संबंधित अध्ययन करना। दर्शन, भारतीय ग्रंथों और दर्शन का दूसरी भाषाओं और संस्कृतियों में रूपांतरण यानी अनुवाद और उसका प्रकाशन। मूर्त वास्तुकला, मूर्तिकला और प्रदर्शन कलाओं की निरंतरता क्या क्या रही, इसका अध्ययन। प्राचीन काल में वस्तुओं और विचारों के वाहक के रूप में व्यापारिक संबंध किस तरह के थे,
1: जी
0: उसका अध्ययन करना। वैश्विक स्तर पर भारतीय प्रवासियों द्वारा सांस्कृतिक संरक्षण और सभ्यतागत निरंतरता, इसकी स्टडी करना। भोजन और पहनावे के माध्यम से संस्कृतियों का आपसी तालमेल बिठाना। अमूर्त विरासत का संरक्षण करना, जैसे लोक कलाएं हैं, त्योहार हैं और मौखिक वाचिक परंपराएं हैं। औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति और भारतीय विद्वता की पुनर्प्राप्ति, ये हासिल करना। और समकालीन दौर में यानी आज के दौर में, कंटेम्पररी टाइम में, सांस्कृतिक कूटनीति आधुनिक युग में सॉफ्ट पावर के रूप में भारत की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है, इस बात को स्टडी करना इसका लक्ष्य है।
1: जी वाधवा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि भारत के विद्यालयों, विश्वविद्यालयों और सार्वजनिक विचार विमर्श की जब बात होती है तो इन्हें दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य एशिया में किस तरह का स्थान प्राप्त होता है? हमारी मतलब जो विरासत है उसे वहां पर किस तरह से लिया जाता है?
2: आज हमारे भारतीय मूल के लोग विश्व के अनेक देशों में रहते हैं, और मॉरिशस, फिजी, कैरिबियन देश हैं, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और खाड़ी क्षेत्र में भारतीय समुदायों ने अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को जीवित रखा है, क्योंकि वो भारतीय भाषाएं बोलते हैं, त्योहार मनाते हैं और फिर संगीत, नृत्य और खान पान की परंपराओं को आगे बढ़ाते हैं। साथ ही वे अपने निवास देशों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में भी योगदान देते रहते हैं। तो प्रवासी भारतीय भारत और दूसरे देशों के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेतु है। उनकी भूमिका केवल व्यापार और अर्थव्यवस्था सीमित नहीं है, वे अपने अनुभवों, भाषाओं और सांस्कृतिक परंपराओं के माध्यम से दोनों समाजों को करीब लाते हैं, और कई पीढ़ियां भारतीय परंपराओं को अपने निवास देशों की संस्कृति के साथ जोड़कर नए रूप भी दे रही हैं। तो इससे पता चलता है कि संस्कृति कोई स्थिर वस्तु नहीं है, जीवन के साथ बदलती है और आगे बढ़ती रहती है। तो आज योग हो या भारतीय संगीत हो, नृत्य, सिनेमा, साहित्य और खान पान की लोकप्रियता विश्व के अनेक देशों में दिखाई देती है। अभी हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो भारत ने कुछ सालों से मनाया है, योग को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने में योगदान दिया है, और भारतीय फिल्मों और संगीत ने विभिन्न भाषाओं और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के लोगों को भारत से परिचित कराया है। ये भी भारत की सांस्कृतिक पहचान की मजबूती बताते हैं। और भारत की संस्कृति में करुणा, अहिंसा, सहिष्णुता और प्रकृति के प्रति सम्मान जैसे विचारों का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि आज हम देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास जैसी वैश्विक चुनौतियों के बीच इन विषयों पर विचार विमर्श उपयोगी हो सकता है, और पारंपरिक ज्ञान का आधुनिक विज्ञान के साथ अध्ययन करके हम उसके उपयोगी पक्षों को समझ सकते हैं और मानवता के कल्याण में योगदान दे सकते हैं। तो भारतीय संस्कृति शक्ति केवल उसके प्राचीन इतिहास में नहीं, बल्कि दूसरों से सीखने, विचारों का आदान प्रदान करने और फिर विश्व को जोड़ने की क्षमता में भी है। तो यही बेहतर भारत का संदेश भी है, अपनी जड़ों से जुड़े रहना, विश्व की विविधता का सम्मान करना और शांतिपूर्ण तथा सहयोगपूर्ण भविष्य के निर्माण में योगदान देना।
1: जी पराशर जी, आज डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया का दौर है जहां पर ऐतिहासिक तथ्यों की बात तो होती है, साथ में उसमें अतिरंजित दावे भी बड़ी तेजी से फैल जाते हैं। तो ऐसे में जब हम इतना बड़ा एक आयोजन लेकर के चल रहे हैं जहां पर बृहत्तर भारत की हम बात कर रहे हैं, कैसे सुनिश्चित होगा कि सांस्कृतिक विरासत की जो चर्चा होगी वो तथ्यों पर आधारित होगी और उन्हीं बातों को लोगों तक पहुंचाया जाएगा जो वास्तव में हमारी विरासत से, हमारे इतिहास से, हमारी संस्कृति से जुड़े रहे हों?
0: निखिल जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि इंटरनेट की दुनिया में आजकल गलत खबर, गलत सूचना, गलत तथ्य बड़ी आसानी से, बहुत सुगमता के साथ प्रचारित कर दिए जाते हैं। लेकिन आज इंटरनेट की सामग्री जो है पूरे विश्व में, उसके प्रति जागरूकता भी बढ़ी है और सरकारी सिस्टम में भी ऐसे प्रावधान किए गए हैं ताकि इस तरह की जो फेक न्यूज है, गलत न्यूज है, गलत तथ्य है, उनका प्रसारण और उनका प्रसार प्रचार पर अंकुश लगाया जा सके, उन्हें फैलने से रोका जा सके। पूरे आयोजन का जो लक्ष्य है, अगर एक वाक्य में कहें तो औपनिवेशिक सीमाओं से दूर जाकर, परे जाकर, भारत को मात्र एक भौगोलिक भूमि न मानकर एक आध्यात्मिक और सभ्यतागत विचार के रूप में फिर से स्थापित करना है। और अगर इसके प्रचार प्रसार पर सही तरह से सकारात्मक माध्यमों से, सकारात्मक स्वरूप में लोगों तक पहुंचाया जाए, दुनिया भर में पहुंचाया जाए, तो मुझे लगता है कि लक्ष्य की प्राप्ति में कोई परेशानी नहीं होगी। जैसा कि

0: भी उल्लेख हुआ, प्राचीन भारत में नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय में उस समय बहुत सारे देशों के छात्र विद्या अध्ययन के लिए आते थे। भारत की पहल पर पूरी उस समय तो इंटरनेट नहीं था, लेकिन
1: जी
0: नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालयों की जो पहचान है, उनकी जो कीर्ति है, पूरी दुनिया में किस तरह फैली होगी। भारत की पहल पर पूरी दुनिया योग दिवस मनाती है, अनिल जी ने भी उल्लेख किया।
1: जी
0: भारतीय आयुर्वेद की ओर पूरी दुनिया में आकर्षण बढ़ रहा है। भारतीय खगोल विज्ञान का लोहा पूरी दुनिया मानती है। भारत ने शून्य दिया, जिसके बिना गणितीय गणनाएं संभव ही नहीं थी।
1: जी
0: रामलीलाओं का आयोजन दुनिया के कई देशों में होता है। होली दीपावली जैसे भारतीय त्योहार पूरी दुनिया में मनाए जा रहे हैं आजकल। भारतीय संगीत, नृत्य परंपराएं, खान पान, शाकाहार, संयम, प्रकृति के सम्मान की परंपरा पूरी दुनिया ने अपनाई है। अनिल जी ने भी कहा, वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः जैसे प्राचीन विचारों की पूरी दुनिया कायल है, और ये विशुद्ध भारतीय विचार हैं। अभी हमने प्रयागराज महाकुंभ में देखा कि बड़ी संख्या में विदेशी श्रद्धालु, विदेशी नागरिक
1: जी
0: उसमें शामिल होने आए। और भी हमारे जो आध्यात्मिक आयोजन होते हैं, उसमें बड़ी संख्या में विदेशों में रह रहे जो भारतीय तो आते ही हैं, लेकिन विदेशी नागरिक भी बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। ऐसे में इस तरह के जो आयोजन है वो बहुत आवश्यक हो जाते हैं। और जैसा मैंने कहा कि केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने पहली बार ये योजना 5 साल के लिए लागू की है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। और बृहत्तर भारत योजना कोई राजनीतिक योजना नहीं है, मेरे हिसाब से ये एक सांस्कृतिक जो धरोहर है, भारत की सांस्कृतिक पहचान है बहुत प्राचीन समय से, उसका पूरे विश्व में प्रचार प्रसार का ये अच्छा अवसर है। और इसके प्रचार प्रसार पर सरकार को भी बहुत ध्यान देना चाहिए, और जो संस्कृति कर्मी है हमारे देश के, आकाशवाणी है, दूरदर्शन है, इनको भी इसके प्रचार प्रसार पर बहुत ध्यान देना चाहिए, तो इसके
1: बिल्कुल
0: अच्छे परिणाम सामने आएंगे, सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे, और खासतौर पर नई पीढ़ी के सामने।
1: जी अनिल वाधवा जी और रवि पराशर जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए और इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे बृहत्तर भारत विश्व में सांस्कृतिक जुड़ाव को दर्शाते एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत अनिल वाधवा और वरिष्ठ पत्रकार रवि पराशर। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अमन यादव। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज तीन महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने की स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी। श्री वैष्णव ने कहा कि दिव्यांगजन पेंशन योजना के अंतर्गत अब 79 वर्ष तक की आयु वर्ग के लिए सहायता राशि ₹375 और 80 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लिए ₹625 होगी।
1: दिव्यांगजनों के लिए जो पहले 80% थ्रेशोल्ड था डिसेबिलिटी पेंशन में एलिजिबिलिटी के लिए, उसको आधा करके 40% पर भी अब दिव्यांग पेंशन दिया जाएगा। पहले दिव्यांग पेंशन 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को ही दिया जाता था, अब जन्म से ही दिव्यांग जन को पेंशन में कवर किया जाएगा। 27 लाख दिव्यांगजन लाभार्थी होंगे। टोटल लाभार्थियों की संख्या बढ़ के करीब 3,20,00,000 हो जाएगी।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने IDBI बैंक के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की भी घोषणा की। श्री वैष्णव ने बताया कि प्रत्येक पात्र कर्मचारी को अधिकतम ₹17,951 का भुगतान किया जाएगा। श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे में बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत कनाडा के साथ एक ऐसी रचनात्मक और भविष्योन्मुखी राजनीतिक साझेदारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जिसे दोनों देशों के लोगों को फायदा हो। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा की। उन्होंने व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के आवागमन में भारत कनाडा संबंधों को और मजबूत करने पर बातचीत की। इसके अलावा विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कनाडा की विदेश मंत्री से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, शिक्षा, ऊर्जा, रक्षा और लोगों के बीच आपसी संपर्क क्षेत्रों में संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। कनाडा की विदेश मंत्री ने कहा कि व्यापार वार्ताओं को आगे बढ़ाने से लेकर ऊर्जा, नवाचार और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने तक भारत और कनाडा की प्रगति से वे

प्रोत्साहित हैं। भारत ने आज सऊदी अरब के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए पश्चिम एशिया के देशों में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणजीत जायसवाल ने कहा कि भारत नागरिक बुनियादी ढांचे पर सभी हमलों की निंदा करता है। उन्होंने कहा कि ऐसे हमलों पूरी तरह अस्वीकार्य हैं और तुरंत बंद होने चाहिए। श्री जायसवाल ने बताया कि सऊदी अरब में भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के साथ नियमित संपर्क में है और परामर्श भी जारी किया गया है। सरकार ने भारत मॉरिशस के दोहरे कराधान निवारण समझौते में संशोधन अधिसूचित किए हैं। इसमें कर चोरी और कर से बचने के लिए संधि प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक प्रमुख उद्देश्य परीक्षण शामिल किया गया है। संशोधित समझौते के अंतर्गत यदि किसी लेन देन या व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य कर संधि लाभों को प्राप्त करना पाया जाता है तो ऐसे लाभों को अस्वीकार किया जा सकता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिश्वतखोरी के एक मामले में म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक अनिल कुमार और दो अन्य निजी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने पुणे में आरोपी अधिकारी के ठिकाने से 1,73,00,000 रुपये बरामद किए हैं। इसके अलावा मैसूरु, बेंगलुरु और दिल्ली में आरोपियों के ठिकानों पर तलाशी ली गई। इस दौरान करीब 50,00,000 रुपये नकद और मामले से जुड़े आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए हैं। सीबीआई ने कहा है कि मामले की आगे की जाँच जारी है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत किसानों की आजीविका में सुधार करते हुए वैश्विक खाद्य भंडार बनने की ओर अग्रसर है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री चौहान ने बताया कि 2014 से 2024 के बीच खाद्य उत्पादन में 49% की वृद्धि के साथ भारतीय कृषि ने कमी के दौर से निकलकर आत्मनिर्भरता और रिकॉर्ड उत्पादन की ओर कदम बढ़ाया है और दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। कृषि में महिलाओं के योगदान को सम्मान देने के लिए कल नई दिल्ली में राष्ट्र स्तर पर महिला किसान दिवस मनाया जाएगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार महिलाएं बुआई, रोपाई, फसल कटाई, पशुपालन और बीज संरक्षण जैसे कई कामों में अहम भूमिका निभाती है। मौसम विभाग ने कल हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।